मान लेना न्याय नहीं, प्रतिशोध है। न्याय का आधार तो दया है, करुणा है, और प्रतिशोध का आधार क्रोध अहंकार। अर्थात हृदय में करुणा धारण किए बिना किसी के अपराध के विषय में विचार करना, किसी को दंड देना क्या अपने आप में ही अन्याय नहीं? स्वयं विचार कीजिए।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपना ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरा वारा हंग्र भाई बुनों ने आपनी बुन अंजलिनु राम राम। किसान भाई बुन आप हमरी रहो आपनु सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनों घणे मान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम के भाई बुनो अमे अमारे टेम माते हाजिर थी जह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाथे। भाई बुनो आज हमारे कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है पारंपरिक बीज वागड़नी खेती की विरासत आत्मनिर्भरता ने बेहतर उत्पादन नो आधार है। अणा विषय माते घणा कानी अमारी आप तक की बात रहेगा पण कार्यक्रम शुरू करा इने पहले आपने हमरा विदा गीत मोरे कर आपड़ी वाते। भाईन बोनो आप हमरते रहजो आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: परंपरागत ज्ञान और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर खेती की ऐसी प्रणालियां विकसित की जो कम संसाधनों में भी बेहतर उत्पादन देने में सक्षम है।
1: बिल्कुल,
0: इन प्रणालियों में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जिसे हम खेती की आत्मा कह सकते हैं, वो है हमारा पारंपरिक बीज। क्योंकि बीज खेती के लिए एक आदान या वस्तु नहीं है, बल्कि ये हमारे किसान साथियों के लिए उनकी स्वतंत्रता, उनकी खाद्य सुरक्षा, उनकी संस्कृति और खेती के ज्ञान का प्रतीक है।
1: बिल्कुल।
0: तो किसान भाइयों, हम कह सकते हैं कि जिस किसान के पास अपना बीज होता है वो खेती के लिए बाजार पर बहुत कम निर्भर रहता है।
1: जी जी सर।
0: इसी के उल्टे यदि हम बात करें तो किसान हर साल बीज खरीदने के लिए बाजार की तरफ देखते हैं। कई बार बीज के मिलने में जो देरी होती है उससे उनकी फसल प्रभावित होती है।
1: बिल्कुल।
0: और बीज के साथ कई सारे बाहरी संसाधनों पर उनकी निर्भरता बढ़ती चली जाती है।
1: जी जी।
0: तो आज अगर खेती की लागत बढ़ रही है, इसमें उर्वरक, कीटनाशक, मजदूरी और सिंचाई, इनके खर्च जो किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे समय में अपने खेत का शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण बीज यदि वो तैयार करें तो इससे कई तरह से हमारी खेती में लागत को कम करने में सहायता मिलेगी।
1: बिल्कुल सर।
0: और आत्मनिर्भर खेती की दिशा में ये हमारा पहला और महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से अगर किसान के पास खुद का अपना बीज होता है तो उसकी बाजार की निर्भरता कम हो जाती है, और अगर उसके पास अपना बीज नहीं होता है तो किस तरीके से खर्च बढ़ता है और उसके सामने चुनौती आ जाती है। यही अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वागड़ क्षेत्र के किसान किस तरीके से बीजों का प्रबंधन करते हैं।
0: तो देखिए किसान भाइयों, जैसे कि कहा भी जाता है, जैसा बीज वैसी फसल। तो खेती की सफलता का पहला आधार अच्छा बीज।
1: बिल्कुल।
0: यदि बीज स्वस्थ है, शुद्ध है और इसी के साथ वो मजबूत है तो फसल भी अच्छी होगी। इसलिए किसान पूरे वर्ष अच्छी उपज की उम्मीद लेकर खेती करते हैं। और हमारे वागड़ क्षेत्र की जो मुख्य खेती है वो वर्षा आधारित खेती है, यानी कि वो बारिश के पानी पर निर्भर करती है।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसी स्थिति में यदि बीज कमजोर या खराब हुआ तो हमारा खर्च, हमारी मेहनत दोनों जो है प्रभावित होते हैं। तो किसान साथियों, यदि बीज प्रबंधन की बात करें, यानी कि बीज की व्यवस्था की बात करें,
1: जी जी,
0: तो वागड़ की जो पारंपरिक बीज की संस्कृति है इसमें ज्यादातर जो फसल के लिए लगने वाला बीज होता है वो किसान पहले से अपने घरों में रखते हैं। तो वागड़ के गांव में बीज संरक्षण कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: बल्कि ये एक सामुदायिक संस्कृति का हिस्सा है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कई बार या तो हमारे पास बीज कम है या किसी तरह का बीज यदि हमारे पास नहीं है तो ऐसी स्थिति में किसान एक दूसरे के साथ बीजों का आदान प्रदान यानी कि विनिमय करते हैं, जिसके बदले में कहीं कोई पैसा नहीं देना होता है।
1: बिल्कुल।
0: यदि किसी किसान की फसल खराब हो जाती है तो गांव के दूसरे किसान उनको बीज उपलब्ध कराते थे। इस प्रकार बीज सामाजिक सहयोग और सामुदायिक सुरक्षा का माध्यम भी है।
1: बिल्कुल।
0: बीज के चयन का कार्य बहुत महत्व रखता है। कटाई के समय खेत की जो सबसे अच्छे पौधे होते हैं उनको किसान चिन्हित करते हैं। इसमें जो बड़े दाने वाले, जैसे हम मक्का की बात करें तो बड़े भुट्टे या अन्य दाल वर्गीय फसलों की बात करें तो उड़द, मूंग, तुअर, इनमें जो सबसे बड़े दाने होते हैं और ज्यादा फली वाला जो पौधा होता है उनका चयन किया जाता है।
1: बिल्कुल।
0: इस प्रकार के पौधों से प्राप्त दाने जो हम बीज के लिए रखते हैं और अगली बुआई में उनका उपयोग करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: बीज चयन में सबसे महत्वपूर्ण यदि हम भूमिका की बात करें तो किसान साथियों, बीज चयन में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
1: जी जी,
0: वे बीजों की कटाई छटाई करने से लेकर सफाई, सुखाने, संरक्षण और भंडारण जैसे महत्वपूर्ण काम को पूरे साल संभालती हैं। परिवारों में बीज संरक्षण की जिम्मेदारी पूरी तरह से महिलाओं के पास होती है।
1: जी जी,
0: ये कहना कोई अतिशोक्ति नहीं होगा। और यही कारण है कि ग्रामीण महिलाओं को पारंपरिक बीज का ज्ञान के जीवंत भंडार के रूप में माना जाता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि हमारे वागड़ क्षेत्र के किसान भाई बहन जो हैं, वो पारंपरिक बीज का प्रबंधन कैसे करते हैं और साथ ही महिलाओं की इसमें क्या भूमिका है, तो सर अब यही मैं जानना चाहूंगी कि बीज के चयन की शुरुआत कहाँ से होती है, इसके लिए कौन कौन सी विशेष बातों का हमारे किसान भाई बहनों को ध्यान रखने की जरूरत होती है।
0: जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो किसान साथियों, अगर हम बीज के चयन की बात करें तो खेत से ही शुरू होता है हमारे बीजों का उत्पादन। अक्सर किसान ये मानते हैं कि बीज उत्पादन फसल कटाई के समय शुरू होता है।
1: बिल्कुल,
0: जबकि वास्तविकता में देखा जाए तो बीज उत्पादन की प्रक्रिया बीज की बुआई से ही शुरू हो जाती है। यदि किसान को गुणवत्तापूर्ण बीज तैयार करना है तो पूरे मौसम के दौरान उसमें कई तरह की सावधानियां बरतनी होती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे बीज उत्पादन के लिए ऐसे खेत का चयन करें या ऐसी जगह का चयन करें जहां जल भराव की समस्या न होती हो, जहां की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ हो, खरपतवार का नियंत्रण विशेष रूप से वहां पे उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। खेत में जो बीज हम डाल रहे हैं, जिससे हम अगला बीज तैयार करना चाहते हैं,
1: बिल्कुल,
0: उसकी गुणवत्ता, शुद्धता और उसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि खराब बीज से अच्छी फसल या अच्छा बीज हम हासिल नहीं कर सकते।
1: जी हाँ।
0: तो फसल के बढ़वार के दौरान नियमित रूप से ये जाकर देखना जरूरी होता है कि खेत में या पौधों पे कोई कीट या बीमारी तो नहीं लग रही है, है ना? पौधे असमान तो नहीं है, कोई बहुत बड़ा हो रहा है, कोई बहुत छोटा हो रहा है, तो ये निरीक्षण लगातार करते रहना पड़ता है, जिससे बीज की गुणवत्ता हम सुनिश्चित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही बताया। जैसा कि आपने हमें बताया कि खेत से शुरू होता है बीज उत्पादन, यही श्रेष्ठ पौधे का चयन हमारे किसान भाई बहन कैसे कर सकते हैं?
0: तो किसान भाइयों, बीज चयन के लिए जो श्रेष्ठ पौधों का चयन होता है, बीज चयन के लिए केवल हमें दानों का चयन नहीं करना है, बल्कि भविष्य की फसल का हम चयन कर रहे हैं। इस चीज को हमें याद रखना है। तो किसान भाई, जिस पौधे से भी बीज रखते हैं वो वास्तव में अगले साल की फसल की गुणवत्ता का निर्धारण करती है। यदि बीज अच्छे होंगे तो फसल अच्छी होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं किसान भाइयों कि श्रेष्ठ पौधों का चयन, तो श्रेष्ठ पौधे के चयन के लिए हमारे नियमित निरीक्षण के आधार पर हमें एक जैसे पौधों का चयन करना है। दूसरा, हमें ऐसे पौधों का चयन करना है जो खेत में सबसे मजबूत स्थिति में हो।
1: जी जी,
0: जिस पे पूरे आकार के फल लगे हों, और यदि एक से अधिक फल लगने वाली फसल है तो जिसमें सबसे ज्यादा फलियां या दाने लगे हैं, इस तरह के पौधों का चयन हमको करना है।
1: बिल्कुल।
0: पौधे के चयन में हमको ये भी ध्यान रखना है कि किस पौधे ने कीटों या बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ के अपनी पैदावार को उत्पन्न किया है।
1: बिल्कुल।
0: तो यदि इस तरह से हम एक पौधे का चयन करते हैं और उससे बीज प्राप्त करते हैं, तो वो स्वस्थ, गुणवत्तापूर्ण और हम उस बीज को एक शक्तिशाली बीज बोल सकते हैं जो कीटों और बीमारियों से बेहतर लड़ने की क्षमता अपने अंदर रखता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। यही अब हम जानना चाहेंगे कि बीज शुद्धता की पारंपरिक प्रक्रिया क्या है जो हमारे किसान भाई बहनों को ध्यान होनी चाहिए।
0: तो किसान भाइयों, बीज शुद्धता की पारंपरिक प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो फसल में मौजूद अवांछित पौधों को हमें निकाल देना चाहिए, जहां जो भी खरपतवार है या फिर ऐसी फसल जो हमने नहीं लगाई है और जिसकी आवश्यकता या जरूरत हमें नहीं है। तो बीज उत्पादन में ये बीज की शुद्धता को निर्धारित करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
1: बिल्कुल,
0: अगर हम ये नहीं करते हैं तो इससे बीज की जो शुद्धता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि कार्यक्रम में हम बीज प्रबंधन को लेकर ढेर सारी बातें आपके माध्यम से जान पा रहे हैं, यही बीज की सफाई और ग्रेडिंग का क्या महत्व है?
0: तो किसान साथियों, बीज की सफाई और ग्रेडिंग की यदि बात करें तो बीज की सफाई केवल उसकी सुंदरता बढ़ाने का विषय नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: ये उसकी गुणवत्ता का प्रश्न है। जब किसान बीजों की सफाई करते हैं तो वास्तव में वो फसल की गुणवत्ता सुधार रहे होते हैं। तो हमें छोटे दाने, टूटे हुए दाने या किसी तरह से रोगग्रस्त या कीटों के द्वारा खाए हुए दाने, इस तरह के दानों को अलग करना उसकी ग्रेडिंग का एक हिस्सा है। तो केवल पूरे भरे हुए, विकसित और स्वस्थ और भारी दानों को ही हमको बीज के रूप में उपयोग करना चाहिए। कई किसान पारंपरिक रूप से बीजों को उड़ा के भी देखते हैं, यानी कि हवा में से उनको नीचे गिराते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कोई बीज यदि अंदर से किसी कीट ने खा लिया है और उसका छिलका ही बचा है तो वो बीज इस तरह से अलग हो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ सामान्य रूप से कई सारे किसान साथी पानी में डुबाकर भी बीजों का निरीक्षण करते हैं कि जो बीज अच्छे होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो बीज गुणवत्तापूर्ण नहीं होंगे वो पानी के ऊपर तैरते हैं। तो इस तरह से भी खराब बीजों को और अच्छे बीजों को अलग किया जाता है और ये ग्रेडिंग के भाग हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने हमें कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है, तो अंत में आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: अंत में हमारे किसान साथियों के लिए मेरा यही संदेश है कि जिस तरह से

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, क्या आपने बच्चों को मौसम बदलते ही सर्दी जुखाम या बुखार होते देखा है? क्या बरसात के दिनों में बच्चों को दस्त उल्टी या मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है?
0: जी जी।
1: क्या आप जानना चाहते हैं श्रोता साथियों कि कुछ आसान सावधानियों से बच्चों को मौसमी बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है?
0: बिल्कुल।
1: तो आज का हमारा विशेष कार्यक्रम बच्चों को मौसमी बीमारियों से कैसे बचाएं उसको लेकर ही है।
0: जी हाँ।
1: बच्चे हमारे परिवार की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं कशिश। उनका स्वस्थ रहना केवल माता पिता के लिए ही नहीं बल्कि समाज की जिम्मेदारी है। तो आइए जानते हैं कि बदलते मौसम में बच्चों की देखभाल कैसे करें और उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित कैसे रखें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी होंगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसा कि हमारे साथी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत के साथ हम उन्हें कार्यक्रम के माध्यम से पहले मनोरंजन करवाते हैं, तो क्यों ना आज भी शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ हम करें।
1: बिल्कुल। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को मौसमी बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि जी आपने गीत से पहले हमारे श्रोता साथियों को ये बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि जब भी मौसम में थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन होता है तो सबसे पहले बीमार हमारे बच्चे ही पड़ते हैं, क्योंकि श्रोता साथियों बचपन जो है वो जीवन का सबसे कोमल और संवेदनशील समय होता है।
1: जी जी,
0: इस उम्र में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं हो पाती है, इसलिए मौसम बदलते ही वे जल्दी बीमार पड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि कभी सर्दी खांसी हो जाती है तो कभी बुखार आ जाता है बच्चों को, कभी दस्त तो कभी त्वचा संबंधित समस्याएं बच्चों को परेशान करने लगती है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, विशेषकर हम बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में बच्चों को संक्रमित होते हुए देखते हैं। लेकिन इन सभी बातों में अच्छी बात ये है दोस्तों कि थोड़ी सी सावधानी, संतुलित आहार, स्वच्छता और सही देखभाल के माध्यम से हम अपने बच्चों को कई मौसमी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो आइए श्रोता साथियों जानते हैं कि बच्चों को मौसमी बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है।
1: जी हाँ, श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे कि मौसमी बीमारियां वे बीमारियां हैं जो मौसम में परिवर्तन होने पर अधिक फैलती हैं। बच्चों में सामान्यतः हम देखते हैं कशिश की सर्दी, जुखाम, वायरल बुखार, खांसी, दस्त, उल्टी, डेंगू, मलेरिया, त्वचा संक्रमण, आंखों का संक्रमण, एलर्जी और सांस संबंधित समस्याएं फैलती हैं। इन बीमारियों का मुख्य कारण संक्रमण, गंदगी, दूषित पानी, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता और मौसम के अनुसार उचित देखभाल का अभाव होता है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कशिश कार्यक्रम के माध्यम से कि बच्चों को बीमारियों से बचाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है स्वच्छता।
0: जी जी,
1: जी हाँ श्रोता साथियों, बच्चों को भोजन से पहले और सोच के बाद साबुन से हाथ धोने की आदत डालें, नाखून नियमित रूप से काटें, घर और आसपास का वातावरण साफ रखें, पीने का जो पानी है वो हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रखें, बच्चों के खिलौनों की समय समय पर सफाई करें, खुले में रखे भोजन से बच्चों को दूर रखें, क्योंकि स्वच्छता न केवल बीमारी को रोकती है बल्कि बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। अब यही साथियों को अगर बताएं कि पौष्टिक भोजन बच्चों के लिए किस प्रकार से सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हो सकता है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर होती है।
1: जी जी,
0: ऐसे में साथियों बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाने में संतुलित भोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के भोजन में हम हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दाले, अंकुरित अनाज, दूध और दुग्ध से बने उत्पाद, सूखे मेवे, मोटे अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार और रागी, ये शामिल कर सकते हैं।
1: जी जी,
0: साथ ही श्रोता साथियों जंक फूड, अधिक तली भुनी चीजें और बाजार के खुले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे हमारे बच्चों को हमें दूर रखना है।
1: बिल्कुल,
0: पौष्टिक भोजन जो है वो बच्चों को अंदर से मजबूत बनाता है अंजलि जी, साथ ही संक्रमण से लड़ने की क्षमता भी बच्चों में बढ़ाता है।
1: जी हाँ, यही कशिश अब बात आती है कि अक्सर माता पिता मौसम के बदलाव को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। जैसे कि अगर गर्मियों का मौसम है तो हमें बच्चों को हल्के सूती कपड़े पहनाने चाहिए, पर्याप्त पानी पिलाना चाहिए, तेज धूप में बाहर जाने से बचाना चाहिए, और अगर बरसात का मौसम हो तो बच्चों के जो भीगे कपड़े होते हैं उन्हें हमें तुरंत बदलना है।
0: जी हाँ,
1: साफ और सूखे कपड़े पहनाने हैं, मच्छरों से सुरक्षा करनी है, और सर्दियों का मौसम होता है तो उसमें हमें बच्चों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनाने हैं, सिर, कान और पैरों को ढककर रखना है, और सुबह शाम की ठंडी हवा से बचाने की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि अंजलि जी हमारी बातें हमारे श्रोता साथियों से बहुत अच्छी चल रही है, और हम जान रहे हैं कि किस प्रकार से मौसमी बीमारियों से हम अपने बच्चों को बचाएं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें आगे भी ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन अभी क्यों ना यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि किस तरीके से हमें बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाने की जरूरत है, मौसमी बीमारियों से क्या होता है, विशेष सावधानी हमें क्या रखनी है, पौष्टिक भोजन किस तरीके से कशिश सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन सकता है, साथ ही हमने जाना कि मौसम के अनुसार कपड़ों का चयन और बच्चों का ध्यान रखने की हमें जरूरत है।
1: बिल्कुल।
0: यही बात करें टीकाकरण के महत्व की, तो श्रोता साथियों, टीकाकरण बच्चों को कई गंभीर बीमारियों से बचाता है और माता पिता को चाहिए कि बच्चों का समय पर टीकाकरण करवाएं, टीकाकरण कार्ड सुरक्षित रखें, किसी भी टीके की खुराक न छूटने दें। टीके बच्चों के स्वास्थ्य की मजबूत नींव तैयार करते हैं।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ बरसात के मौसम में डेंगू और मलेरिया

0: का खतरा बढ़ जाता है, इसके लिए घर के आसपास पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएं, कूलर और पानी की टंकियों की नियमित सफाई करें। इसी के साथ एक छोटी सी लापरवाही श्रोता साथियों बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए बच्चों के लिए पर्याप्त नींद बेहतर आवश्यक है।
1: जी
0: छोटे
1: हाँ,
0: बच्चों को उम्र के अनुसार पूरी नींद मिलनी चाहिए। बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर रखकर खेल कूद के लिए प्रेरित करना है। योग और हल्की शारीरिक गतिविधियाँ भी जरूरी है, क्योंकि कशिश अच्छी नींद और नियमित गतिविधियाँ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो ये तो आपने बात करी कि हमारे बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए हम क्या सावधानी बरत सकते हैं और कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है।
0: बिल्कुल,
1: यही अगर साथियों बात करें कि बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। जैसे कि यदि आपके बच्चे में कुछ लक्षण दिखाई दे तो श्रोता साथियों उन पर आप तुरंत ध्यान दें। जैसे कि बच्चे को लगातार बुखार बना रहता है, खांसी या सांस लेने में परेशानी है, बार बार दस्त या उल्टी बनी रहती है, अत्यधिक कमजोरी है बच्चों में और भूख न लगना भी एक कह सकते हैं अंजलि जी लक्षण हो सकता है मौसमी बीमारियों की शुरुआत का।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में साथियों समय पर चिकित्सीय सलाह लेने से बीमारी गंभीर होने से बच सकती है। अगर अंजलि जी हम ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में विशेष सावधानियों को लेकर बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वागड़ क्षेत्र सहित ग्रामीण इलाकों में बच्चों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पूरे समुदाय की होती है।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों से नियमित संपर्क बनाकर रखें साथियों। बच्चों का वजन और स्वास्थ्य जांच करवाते रहें समय समय पर, साफ पानी और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित आप करें और गांव में स्वच्छता अभियान और जन जागरूकता गतिविधियों में भी आप बच्चों के साथ भाग ले सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अंजलि जी जब पूरा समुदाय जागरूक होता है तब बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनता है।
0: जी हाँ, यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि बच्चे केवल हमारे परिवार की ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं।
1: जी हाँ,
0: उनका स्वस्थ रहना हमारे आने वाले कल की मजबूती का आधार है। मौसम बदलना प्रकृति का नियम है, लेकिन सही जानकारी और समय पर सावधानी अपनाकर हम बच्चों को कई बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: स्वच्छता, पौष्टिक भोजन, समय पर टीकाकरण, पर्याप्त नींद और प्यार भरी देखभाल बच्चों के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा की ढाल है। हम सभी को मिलकर यह संकल्प लेना होगा कि अपने घर, आंगन और गांव के हर बच्चे के स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि स्वस्थ बच्चा ही स्वस्थ समाज और उज्जवल भविष्य की पहचान है। क्योंकि श्रोता साथियों किसी भी समाज की असली पहचान उनके बच्चों की मुस्कान, उनके स्वास्थ्य और उनके सुरक्षित भविष्य से होती है।
1: जी जी,
0: जब कशिश बच्चे स्वस्थ होते हैं तभी वे खुलकर सीखते हैं, खेलते हैं, सपने देखते हैं और आगे चलकर समाज के जिम्मेदार नागरिक बनते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए बच्चों की देखभाल केवल माता पिता की ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय का दायित्व है। घर, विद्यालय, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र और गांव, प्रत्येक व्यक्ति यदि बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे तो मौसमी बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, साथ ही हमारे श्रोता साथियों से हम ये भी कहना चाहेंगे कि दोस्तों आज के समय में जानकारी की कमी नहीं है, आवश्यकता है तो सिर्फ सही जानकारी को अपनाने की और उसे व्यवहार में लाने की।
0: बिल्कुल
1: अंजलि जी, कई बार छोटी छोटी सावधानियाँ जैसे कि साफ पानी पीना, साफ पानी का उपयोग करना, हाथ धोने की आदत, समय पर डॉक्टर की सलाह और पौष्टिक भोजन के साथ साथ स्वच्छ वातावरण बच्चों को कई परेशानियों से बचा सकता है।
0: जी हाँ
1: साथियों, बीमारी का इलाज जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बीमारी को होने से रोका जाए। यही समझ अंजलि जी एक स्वस्थ और जागरूक समाज की पहचान मानी जाती है। ऐसे में दोस्तों हमें अपने बच्चों को केवल अच्छा जीवन ही नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन देने का संकल्प भी लेना चाहिए।
0: जी हाँ,
1: उन्हें ऐसा वातावरण दे जहाँ वे निडर होकर आगे बढ़ सके, अपनी प्रतिभा को पहचान सके और अपने सपनों को साकार कर सके। श्रोता साथियों, आज बच्चों के स्वास्थ्य पर किया गया निवेश आने वाले कल के मजबूत समृद्ध समाज की नींव बनता है।
0: बिल्कुल कशिश, तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ये जान पाए कि मौसमी बीमारियों से हमें हमारे बच्चों को कैसे बचाना है और किन किन विशेष बातों का माता पिता को ध्यान रखने की जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी। क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल अंजलि जी,
2: चकलोरम गंडो वंडो लकरक टम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई चिकी चक चो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकनक हुक बुकुरे टुक बुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिली सिली सिली गो बगड़ दुम जगड़ दुम चिकी चक चो।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही कि हम अपने बच्चों को मौसमी बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं और इसमें हमें क्या सावधानी बरतनी है, ये भी हम कार्यक्रम के माध्यम से जान पाए हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये सभी बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कश

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है श्रोताओं, लोगों को नौकरी छोड़ने पर मजबूर करती है कुछ बातें।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि कशिश, नौकरी पाना आसान नहीं होता, इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रतियोगिताएं होती है, इंटरव्यू और कई बार वर्षों का इंतजार करना पड़ता है।
0: जी जी।
1: और जब नौकरी मिलती है श्रोताओं तो परिवार में खुशी होती है, भविष्य को लेकर उम्मीदें बढ़ जाती है और व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन सवाल ये है कि जब कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ देता है तो क्या वो हमेशा अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ता है? जरूरी नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति नौकरी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कार्यस्थल का माहौल, लगातार बढ़ता दबाव, सम्मान की कमी, काम और निजी जीवन के बीच असंतुलन या अपनी मेहनत का उचित मूल्य न मिलना उसे फैसला लेने के लिए मजबूर कर देता है।
0: बिल्कुल,
1: नौकरी छोड़ना हमेशा हार नहीं होती श्रोताओं, कभी कभी ये अपने सम्मान और मानसिक शांति को चुनने का फैसला भी होता है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस विषय पर ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोगों को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर देती हैं।
1: बिल्कुल,
0: और साथ ही ये भी जानेंगे कि एक बेहतर कार्यस्थल बनाने की जिम्मेदारी आखिर होती किसकी है। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं पहले यहाँ पर एक प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,
0: तो दोस्तों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: यार इनकी भी जोड़ी क्या कमाल की है ना।
1: जब लोग हमारी जोड़ी को पहली बार बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे ना, तो ऐसी सारी जोड़ियों को भूल जाएंगे।
0: संजय, हमारा एक ख्वाब पूरा तो होगा ना?
1: कोई शक।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें होती है जिनकी वजह से लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ती है।
1: बिल्कुल,
0: बात करें जागृति जी की, नौकरी सिर्फ वेतन का नाम नहीं होता।

0: क्योंकि जब भी हम नौकरी की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सबसे पहले वेतन ही आता है। लेकिन श्रोता साथियों, वास्तव में नौकरी केवल महीने के अंत में मिलने वाली सैलरी नहीं है। एक व्यक्ति अपने काम के साथ अपना समय, ऊर्जा, कौशल, भावनाएं और जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी देता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए किसी भी कर्मचारी के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि उसे अपने कार्यस्थल पर सम्मान मिले, उसकी बात को सुना जाए, उसके काम की सराहना की जाए और आगे बढ़ने का अवसर भी उसे मिले।
1: जी हाँ,
0: अगर किसी व्यक्ति को अच्छा वेतन मिल रहा है लेकिन हर दिन उसे अपमानित किया जाता है, उसकी मेहनत को नजरअंदाज किया जाता है और उसे लगातार असुरक्षित महसूस कराया जाता है, तो लंबे समय तक वहाँ काम करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: यही कारण है दोस्तों कि आज कर्मचारी नौकरी चुनते समय केवल ये नहीं देखते कि कितनी सैलरी मिलेगी, बल्कि ये भी देखते हैं कि मैं वहाँ किस माहौल में काम करूँगा।
1: जी हाँ कशिश, इसी के साथ नौकरी छोड़ने की सबसे बड़ी वजह में से एक हो सकता है लगातार बढ़ता काम का दबाव। किसी भी नौकरी में व्यस्तता होना सामान्य है, कई बार समय सीमा के कारण अतिरिक्त मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन जब हर दिन काम की मात्रा इतनी बढ़ जाए कि व्यक्ति को सांस लेने तक का समय न मिले तो स्थिति मुश्किल हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: सुबह से शाम तक लगातार काम, एक साथ कई जिम्मेदारियां, बार बार बदलते लक्ष्य और हर समय जल्दी काम पूरा करने का दबाव व्यक्ति को थका सकता है। शुरुआत में व्यक्ति सोचता है कशिश कि थोड़ा समय है, संभाल लूंगा, लेकिन जब यही स्थिति लगातार बनी रहती है तो काम के प्रति उत्साह कम होने लगता है।
0: जी हाँ।
1: इसीलिए संस्थानों को समझना बहुत जरूरी है कि व्यस्त कर्मचारी और अत्यधिक दबाव में काम करने वाले कर्मचारी में अंतर होता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, साथ ही अगर बात करें सम्मान की कमी की, तो किसी भी व्यक्ति के लिए सम्मान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।
1: जी हाँ,
0: हो सकता है कि कर्मचारी से कोई गलती हो जाए, साथियों गलती पर समझाना और सुधार का अवसर देना एक सकारात्मक तरीका है, लेकिन बार बार सबके सामने डांटना, अपमानित करना या उसकी छोटी छोटी गलतियों को लेकर उसे नीचा दिखाना व्यक्ति के आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, एक कर्मचारी ये महसूस करना चाहता है कि मेरी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा और मेरी अच्छाई को भी देखा जाएगा।
1: जी हाँ,
0: जब कार्यस्थल पर सम्मान नहीं मिलता तो कई लोग अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी जागृति जी वहाँ से जाने का फैसला कर लेते हैं। कहा जाता है कि काम करवाने के लिए डर जरूरी नहीं, सम्मान और भरोसा ज्यादा जरूरी होता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, और इसी के साथ मेहनत के अनुसार पहचान न मिलना भी नौकरी छोड़ने का कारण बनता है। कल्पना कीजिए श्रोता साथियों कि एक कर्मचारी लगातार मेहनत कर रहा है, वो समय पर काम करता है, अतिरिक्त जिम्मेदारी लेता है और टीम की मदद भी करता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जब सफलता मिलती है तो उसका श्रेय किसी और को मिल जाता है। ऐसी स्थिति बार बार होने पर कर्मचारी के मन में सवाल उठ सकते हैं, जब मेरी मेहनत की कोई पहचान ही नहीं है तो मैं इतना प्रयास क्यों करूं?
0: बिल्कुल,
1: हर व्यक्ति चाहता है कशिश कि उसकी मेहनत को पहचाना जाए। हर बार पुरस्कार देना जरूरी नहीं श्रोताओं, कई बार सिर्फ एक वाक्य जरूरी है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ये भी व्यक्ति को आगे मेहनत की प्रेरणा दे सकता है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही हैं, ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अभी यहाँ पर सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी इस कार्यक्रम के माध्यम से बातें चल रही थी कि लोगों को नौकरी छोड़ने पर मजबूर करती है कौन कौन सी बातों को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि हम जान पा रहे थे कि लगातार काम का दबाव भी नौकरी छोड़ने का कारण बन सकती है, सम्मान की कमी भी नौकरी छोड़ने का कारण बनती है, और मेहनत के अनुसार पहचान न मिलना भी नौकरी छोड़ने का कारण बनती है।
1: बिल्कुल,
0: यही जानते हैं कशिश की वेतन और जिम्मेदारी में असंतुलन होता है तो ये भी नौकरी छोड़ने का कारण बनती है।
1: जी हाँ
0: श्रोताओ, अगर किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन उसके वेतन, सुविधाओं या भूमिका में कोई उचित बदलाव ही न हो तो उसके अंदर असंतोष पैदा हो जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: कर्मचारी महसूस कर सकता है कि उससे उसकी क्षमता से ज्यादा काम लिया जा रहा है लेकिन उसकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इसलिए संस्थानों के लिए जरूरी है कि वे कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और उनके योगदान का समय समय पर मूल्यांकन जरूर करें।
1: बिल्कुल जागृति जी, साथ ही हम देखते हैं कि आज के समय में वर्क लाइफ बैलेंस यानी कि काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बेहद महत्वपूर्ण विषय बन गया है।
0: बिल्कुल,
1: अगर कार्यालय का काम खत्म होने के बाद भी लगातार फोन मैसेज और काम से जुड़े निर्देश आते रहते हैं तो व्यक्ति अपने परिवार और खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। श्रोता साथियों, और इंसान को आराम, परिवार, दोस्तों, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के लिए समय चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: काम महत्वपूर्ण है लेकिन काम जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। अगर नौकरी व्यक्ति को उसके परिवार, स्वास्थ्य, पढ़ाई या व्यक्तिगत जीवन से लगातार दूर कर रही है जागृति जी, तो लंबे समय में वह नौकरी छोड़ने के बारे में सोच सकता है।
0: बिल्कुल कशिश, और इसी के साथ हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो कुछ नया सीखे और अपने करियर में आगे बढ़े। अगर वर्षों तक एक ही पद पर काम करने के बाद भी उसे सीखने, जिम्मेदारी बढ़ाने या पदोन्नति का अवसर नहीं मिलता तो उसे लग सकता है कि उसका करियर रुक गया है। खासकर श्रोता युवाओं के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। हम देखते हैं कशिश की युवा केवल नौकरी नहीं चाहते हैं, वे करियर बनाना चाहते हैं। उन्हें प्रशिक्षण, नई जिम्मेदारियां, नई तकनीक सीखने और अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलने चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही हम कहना चाहेंगे कि कार्यस्थल का माहौल किसी भी नौकरी के अनुभव को बेहतर या खराब बना सकता है। अगर कर्मचारियों के बीच हर समय तनाव रहेगा, गुटबाजी रहेगी, गलतफहमियां रहेंगी, प्रतियोगिता या एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश होती रहेगी तो काम करना ठीक नहीं रहता है।
1: बिल्कुल,
0: एक अच्छा कार्यस्थल वो है जहां कर्मचारी एक दूसरे की मदद करें, अपनी बात खुलकर रख सके और समस्या आने पर समाधान खोजने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल,
0: जहां सहयोग होता है वहां काम बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी बन जाता है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें तो श्रोता साथियों, कई बार व्यक्ति नौकरी नहीं बल्कि अपने खराब बॉस या खराब नेतृत्व के कारण भी नौकरी छोड़ देता है।
0: बिल्कुल,
1: एक अच्छा नेतृत्व कर्मचारी को डराता नहीं बल्कि उसे मार्गदर्शन देता है जागृति जी। अगर वरिष्ठ व्यक्ति हर बात पर गुस्सा करे, कर्मचारियों की बात न सुने और केवल गलतियां खोजे या हर परिस्थिति में दोष कर्मचारी पर डाल दे तो कार्यस्थल का माहौल नकारात्मक हो सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक अच्छे लीडर की पहचान केवल ये नहीं है कि वह टीम से काम करवा सके बल्कि ये भी है कि वह अपने टीम को समझ सके।
0: बिल्कुल, इसी के साथ हमें अपनी बात रखने की आज़ादी होनी चाहिए। जहां अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं होती कशिश, वहां भी नौकरी छोड़ने का एक कारण बन सकती है। श्रोताओं, कर्मचारी अगर किसी समस्या को लेकर अपनी बात नहीं कह सकता है, उसे लगता है कि उसकी बात कहने पर उसे नुकसान हो सकता है तो वो धीरे धीरे अपनी समस्याएं बताना बंद कर देता है।
1: बिल्कुल,
0: इसके बाद छोटी समस्या बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए हर संस्था में ऐसा वातावरण होना बहुत जरूरी है जहां कर्मचारी सम्मान पूर्वक अपनी बात को रख सके।
1: जी हाँ,
0: और कहा भी गया है कशिश, और हर कार्यक्रम के माध्यम से हम कहते हैं कि जहां संवाद बंद हो जाता है वहां समस्या बढ़ती जाती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, साथ ही अगर बात करें तो नौकरी में स्थिरता भी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है।
0: बिल्कुल,
1: अगर कर्मचारी को हमेशा ये डर लगा रहेगा कि कभी भी नौकरी जा सकती है या उसका पद बदला जा सकता है, उसके साथ बिना स्पष्ट कारण के कोई फैसला लिया जा सकता है तो उसका भरोसा कमजोर हो सकता है। श्रोता साथियों, हर नौकरी में कुछ अनिश्चितताएं तो हो सकती हैं, लेकिन पारदर्शी संवाद और स्पष्ट नीतियां कर्मचारियों का विश्वास बढ़ा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के युवा लगातार सीखना चाहते हैं, तकनीक तेजी से बदल रही है, नए कौशल सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर किसी कर्मचारी को लंबे समय तक कुछ नया सीखने का अवसर नहीं मिलता तो उसे लग सकता है कि वह अपने करियर में पीछे रहा है। इसलिए श्रोता साथियों, संस्थानों को अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं और नई जिम्मेदारियों के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए।
0: जी हाँ,
1: कहा गया है जागृति जी कि जो संस्था अपने कर्मचारियों को सीखने का अवसर देती है वह खुद भी आगे बढ़ती है।
0: और हम कह सकते हैं कशिश कि किसी व्यक्ति के नौकरी छोड़ने का कारण हमेशा एक बड़ी घटना नहीं होती है।
1: बिल्कुल,
0: कई बार छोटी छोटी बातें लंबे समय तक जमा होती रहती है। काम का दबाव, समय की कमी, सम्मान की कमी, कम वेतन, अवकाश की परेशानी, बात न सुनी जाना, भविष्य की अस्पष्टता और लगातार तनाव। श्रोताओं, इन सभी चीजों का असर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक दिन व्यक्ति कहता है कि अब मैं नौकरी आगे नहीं कर पाऊंगा।
1: जी हाँ।
0: इसलिए कर्मचारी की नौकरी छोड़ने के बाद केवल ये पूछना पर्याप्त नहीं है श्रोताओं कि उसने नौकरी क्यों छोड़ी। हमें ये भी सोचना होगा कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिन्होंने उसे ये फैसला लेने तक पहुँचाया। समाज में कई बार नौकरी छोड़ने वाले व्यक्ति को लेकर तुरंत धारणा बना ली जाती है।
1: बिल्कुल,
0: उसमें धैर्य नहीं होगा, उसे काम करना नहीं आता होगा, आजकल के युवा कहाँ टिकते हैं। लेकिन हर मामले की कहानी अलग होती है श्रोताओं। किसी व्यक्ति के फैसले के पीछे कई व्यक्तिगत और पेशेवर कारण हो सकते हैं। इसलिए किसी को नौकरी छोड़ने पर तुरंत जज करने के बजाय उसकी परिस्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए।
1: जी हाँ जागृति जी, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि युवा साथियों, अगर आप नौकरी कर रहे हैं और किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो तुरंत निर्णय लेने के बजाय पहले स्थिति को समझिए।
0: बिल्कुल,
1: अपनी समस्या को लिखिए, अपने वरिष्ठों से बात कीजिए, जरूरत हो तो भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह भी लीजिए, अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझिए। साथ ही नई नौकरी या करियर विकल्प तलाशने से पहले अपनी आर्थिक और व्यक्तिगत स्थिति पर विचार कीजिए। और सबसे जरूरी बात कि अपनी नौकरी के साथ साथ अपने कौशल को भी मजबूत करते रहिए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि कौशल आपके करियर की सबसे बड़ी ताकत है साथियों।
0: जी हाँ कशिश, और ये जिम्मेदारी केवल कर्मचारियों की नहीं होती, संस्था को भी समय समय पर पूछना होगा कि क्या हमारे कर्मचारी सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर रहे हैं, क्या उनकी बात सुनी जा रही है, उनके काम की पहचान होती है, क्या उन्हें सीखने का अवसर मिलता है, क्या काम का बोझ उचित है, क्या उन्हें अपने परिवार और निजी जीवन के लिए समय मिल रहा है।
1: बिल्कुल,
0: अगर किसी संस्था में कर्मचारी बार बार नौकरी छोड़ रहे हैं तो केवल कर्मचारियों को दोष देने के बजाय कार्यस्थल की व्यवस्था पर भी विचार करना बहुत जरूरी है श्रोताओं, क्योंकि कर्मचारी किसी संस्था की सबसे

0: हमारे युवा साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल,

0: साथ ही उस गीत के साथ विदा लेते हैं और अंत में यही कहना चाहेंगे कि नौकरी लोगों को सिर्फ वेतन से नहीं जोड़ती, सम्मान, विश्वास और अच्छे व्यवहार से भी जोड़ती है।
1: बिल्कुल।
0: और अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ने का फैसला करता है तो उसे केवल ये कहकर नजरअंदाज ना करें कि वो टिक नहीं पाएगा। कभी कभी सवाल ये भी होना चाहिए कि क्या हमने उसे टिके रहने की सही वजह दी थी। इसी सोच के साथ श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे, पर आपको जाने से पहले हमारा पता बताना चाहेंगे ताकि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

सेहत नो राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वगर रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय है कहावतें और लोक कथाओं में छिपी जीवन की सीख को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि अंजलि हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों में कही जाने वाली छोटी छोटी कहावतें और बचपन में सुनी गई लोक कथाओं में जीवन का कितना बड़ा ज्ञान छिपा होता है। कभी दादी माँ की कहानी हमें ईमानदारी का रास्ता दिखाती है तो कभी किसी बुजुर्ग की कहानी एक पंक्ति हमें कठिन समय में धैर्य रखना सिखाती है।
0: बिल्कुल,
1: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जरूर जानेंगे कहावतें और लोक कथाओं में छिपी जीवन की सीख को लेकर। लेकिन शुरुआत में सुन लेते हैं कार्यक्रम।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं कहावतें और लोक कथाओं में छिपी जीवन की सीख को लेकर। तो अंजलि, जैसे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जैसी करनी वैसी भरनी और एकता में बल, ये केवल कुछ शब्द नहीं है श्रोताओं, बल्कि जीवन जीने की ऐसी सीख है जो समय बदलने के बाद भी अपना महत्व नहीं खोती है। हमारे गाँव की चौपाल, खेतों की मेड़ों, घर के आंगन और परिवार के बीच सुनाई जाने वाली कहानियाँ केवल मनोरंजन का साधन नहीं रही, वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनुभव, संस्कार और समझ पहुँचाने का माध्यम रही है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहाँ मोबाइल और इंटरनेट ने हमारी दिनचर्या बदल दी है, वहीं एक सवाल हमारे सामने खड़ा है कि क्या हम अपनी लोक कथाओं और कहावतों में छिपे ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हम जैसा कि बात कर रहे हैं कि कहावतों और लोक कथाओं में छिपी जीवन की सीख को लेकर, तो श्रोताओं, अपनी लोक परंपराओं के उस खजाने को हम समझते हैं जिसमें हमारे समाज का अनुभव, हमारी संस्कृति और जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता छिपा है।
0: बिल्कुल,
1: इसमें सबसे पहली बात आती है अनुभव की अनमोल धरोहर है कहावतें और लोक कथाएं। कहना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों से कि भारत विविध भाषाओं, बोलियों और परंपराओं, संस्कृतियों का देश है।
0: बिल्कुल,
1: यहाँ हर क्षेत्र की अपनी कथाएं हैं, अपनी कहावतें हैं और जीवन को समझने के अपने तरीके हैं। राजस्थान के गांवों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक, खेतों में काम करने वाले किसानों से लेकर घर के आंगन में बैठी बुजुर्ग महिलाओं तक, हर जगह लोक ज्ञान की अपनी समृद्ध परंपरा दिखाई देती है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि कहावतें ऐसी छोटी छोटी पंक्तियाँ होती हैं जिनमें लंबे अनुभव का सार छिपा होता है। इन्हें याद रखना आसान होता है और सही अवसर पर इनका अर्थ जीवन को दिशा दे सकता है।
1: बिल्कुल,
0: उदाहरण के लिए हम बात बताएं तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इस कहावत का अर्थ केवल पानी इकट्ठा करने से नहीं है श्रोताओं, ये हमें बताती है कि छोटी छोटी कोशिशों से मिलकर बड़े परिणाम पैदा होते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा सीखना, थोड़ी बचत करना, समय पर काम करना और लगातार प्रयास करते रहना, ये सभी इसी सीख के उदाहरण हैं। इसी प्रकार अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं कि लोक कथाएं ऐसी कहानियां हैं जिनमें पात्रों, घटना और परिस्थितियों के माध्यम से जीवन के अनुभव समझाए जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कभी कोई किसान अपनी समझदारी से समस्या का समाधान करता है, कभी कोई छोटा जीव अपनी बुद्धि से बड़े संकट को टाल देता है, तो कभी दो पड़ोसियों की कहानी हमें मिलजुल कर रहने का महत्व समझाती है।
1: जी जी,
0: इन कहानियों का उद्देश्य केवल ये बताना नहीं होता श्रोताओं कि क्या सही है और क्या गलत, वे हमें सोचने, परिस्थिति को समझने और अपने निर्णयों पर विचार करने का अवसर भी हमें देती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात आती है जैसे करनी वैसे भरनी।
0: बिल्कुल,
1: तो श्रोता साथियों, ये हमें कर्म का महत्व सिखाती है। हमारे समाज में ये कहावत जो है वो बहुत प्रसिद्ध है और यह हमें समझाती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव किसी न किसी रूप में हमारे जीवन और आसपास के समाज पर पड़ता है। यदि हम दूसरों के साथ ईमानदारी और सम्मान से व्यवहार करते हैं तो विश्वास का वातावरण बनता है। यदि हम किसी को धोखा देते हैं या दूसरों की मेहनत का अनुचित लाभ उठाते हैं तो संबंधों में अविश्वास पैदा होता है। आइए श्रोता साथियों, इसे एक छोटी सी लोक कथा के माध्यम से समझते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि जागृति जी, एक गांव में दो किसान रहते थे, दोनों के खेत आसपास थे। एक किसान अपने खेत की देखभाल मेहनत और ईमानदारी से करता, वह अपने पड़ोसी के खेत में पानी की आवश्यकता होने पर उसे भी मदद देता था। दूसरा किसान सोचता था कि केवल अपना लाभ देखना ही समझदारी है। एक

0: तक पानी पहुंच गया। दूसरे किसान ने शुरुआत में किसी का साथ नहीं दिया। जब उसके खेत में पानी की समस्या आई तब उसे समझ आया कि कठिन समय में संबंध और सहयोग कितने महत्वपूर्ण होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये कहानी हमें बताती है श्रोता साथियों कि हमारा व्यवहार हमारे आसपास के वातावरण को बनाता है। दूसरों के प्रति हमारा सहयोग समाज में विश्वास बढ़ाता है।
1: हाँ।
0: इसलिए जीवन में हर अच्छे काम का परिणाम तुरंत नहीं मिलता और हर कठिनाई किसी गलती का परिणाम नहीं होती है। फिर भी ईमानदारी, जिम्मेदारी और अच्छे कर्म जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम बताते हैं एकता में बल को लेकर, यानी कि श्रोताओं एकता में बल यानी कि मिलजुल कर रहने की सीख। हमारे गांव में सामूहिक जीवन की एक लंबी परंपरा रही अंजलि। कुएं की मरम्मत हो, तालाबों की सफाई हो, रास्ते का निर्माण हो या फसल की कटाई, अनेक कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें मिलकर करना आसान हो जाता है। श्रोताओं एकता में बल है, इसी सामाजिक समझ को सामने लाने वाली कहावत है। एक लोक कथा में एक बुजुर्ग अपने परिवार के सदस्यों को एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहते हैं। सभी लकड़ियां आसानी से टूट जाती है, फिर वे लकड़ियों का एक गट्ठर बांधकर उसे तोड़ने को कहते हैं। अब इसे तोड़ना कठिन हो जाता है। इस उदाहरण से बुजुर्ग समझाते हैं कि जब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं तो वे कई मुश्किलों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस सिख का अर्थ ये नहीं है कि सभी को हर बात पर सहमत होना चाहिए। सच्ची एकता तो वो है जिसमें अलग अलग विचार रखने वाले लोग भी बातचीत करके साझा समाधान खोज सकते हैं। गांव की ग्राम सभा में अगर लोग पानी, शिक्षा, सड़क, स्वच्छता और सार्वजनिक संसाधनों पर मिलकर चर्चा करेंगे तो विकास की योजनाएं और अधिक प्रभावी बन सकती है।
0: बिल्कुल,
1: और यही सच्चे स्वराज की भावना है, जहां समाज अपनी समस्याओं को समझता है, निर्णयों में भाग लेता है और मिलजुल कर समाधान खोजता है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आज हम जान रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से कहावतों और लोक कथाओं में छिपी जीवन की सीख को लेकर। तो जैसा कि बातें आगे और भी निरंतर यूं ही कार्यक्रम में बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में जैसा कि गीत से पहले हमने जाना, एकता में बल है कि मिलजुल कर रहना कैसे हम सीख सकते हैं। यही बात आती है जहाँ चाह वहाँ राह,
1: बिल्कुल,
0: यानी धैर्य और प्रयास के महत्व को। जागृति जी, लोक कथाओं में ऐसे अनेक पात्र मिलते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं छोड़ते। वे अपनी बुद्धि, मेहनत और धैर्य से समाधान खोजते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह का अर्थ है कि किसी लक्ष्य को पाने की सच्ची इच्छा के साथ योजना बनाकर लगातार प्रयास करना।
1: जी हाँ।
0: मान लीजिए श्रोता साथियों कि किसी गांव के बच्चों को पुस्तकालय की सुविधा नहीं मिलती। कुछ लोग सोच सकते हैं कि पुस्तकालय बनाने के लिए बहुत धन चाहिए, इसलिए यह संभव नहीं है। लेकिन यदि शिक्षक, अभिभावक और गांव के लोग मिलकर पुराने कमरे को व्यवस्थित करें, पुस्तकें जुटाएं और पढ़ने का समय तय करें, तो एक छोटी शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे यही प्रयास एक उपयोगी सामुदायिक पुस्तकालय का रूप ले सकता है।
1: बिल्कुल।
0: यहाँ ध्यान देने वाली बात जागृति जी ये है कि केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं है, सही जानकारी, संसाधनों का उपयोग, दूसरों का सहयोग और नियमित प्रयास भी आवश्यक है। लोक कथाएं हमें यह समझाती हैं कि कठिनाइयां देखकर रुक जाना ही एकमात्र विकल्प नहीं है, हम परिस्थिति को समझकर उसके अनुसार नया रास्ता भी खोज सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आपने बताया कि जहाँ चाहा वहाँ राह की बात हो, यही अगर बुजुर्गों की कहानियों को लेकर हम बात करें तो हमारे घरों में दादा दादी, नाना नानी और अन्य बुजुर्ग अक्सर अपने जीवन के अनुभवों से जुड़ी कहानियां हमें सुनाते हैं। उनकी बातों में पुराने समय का रहन सहन, खेती के तरीके, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, रिश्तों की अहमियत और कठिन परिस्थितियों से निपटने के अनुभव शामिल होते हैं। पहले कई बच्चे रात को सोने से पहले कहानियां सुन सकते थे। इन कहानियों के माध्यम से वे भाषा सीखते थे, नए शब्दों से परिचित होते थे और सही गलत पर विचार करना सीखते थे। आज हम देख रहे हैं अंजलि कि तकनीक ने मनोरंजन के बहुत सारे साधन दे दिए हैं। मोबाइल और इंटरनेट ने जानकारी प्राप्त करना आसान कर दिया है, लेकिन परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने और कहानी सुनने का अनुभव भी अपने आप में महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल।
1: यदि सप्ताह में एक दिन श्रोताओं, परिवार के सदस्यों के साथ हम बैठकर कोई पुरानी कहानी सुने तो बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में जानने का अवसर मिलेगा।
0: बिल्कुल।
1: बच्चे भी अपने बुजुर्गों से पूछ सकते हैं कि उनके बचपन में गांव कैसा था, लोग पानी कैसे बचाते थे, खेती कैसे होती थी और त्योहार किस तरह मनाए जाते थे। इस तरह बातचीत केवल अतीत की याद नहीं रहेगी बल्कि अनुभव को समझने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी।
0: जी हाँ।
1: साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि हर पुरानी मान्यता सही नहीं होती। किसी भी कहानी या कहावत को समझते समय तर्क, समानता, सम्मान और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जुड़ती है, वो है लोक कथाओं में छिपा प्रकृति संरक्षण का संदेश।
1: बिल्कुल।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारी अनेक लोक कथाएं प्रकृति, जंगल, पानी, मिट्टी और पशु पक्षियों से जुड़ी होती है। ग्रामीण जीवन में प्रकृति केवल आसपास का दृश्य नहीं बल्कि जीवन और आजीविका का आधार भी है। किसानों का जीवन वर्षा, मिट्टी की उर्वरता और पानी की उपलब्धता से जुड़ा होता है। पशुपालकों के लिए चारागाह, जल स्रोत महत्वपूर्ण होते हैं। जंगल अनेक समुदायों को भोजन, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए लोक ज्ञान में मौसम के संकेतों, पेड़ पौधों और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से जुड़ी अनेक बातें मिलती हैं। इन अनुभवों को समझना उपयोगी है, लेकिन मौसम और खेती से जुड़े निर्णय लेते समय वैज्ञानिक जानकारी को भी महत्व देना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: एक काल्पनिक लोक कथा की अगर कल्पना करें तो श्रोता साथियों, एक गांव में लोग तालाब का पानी बिना सोचे समझे इस्तेमाल करने लगे। गर्मी आने पर तालाब सूखने लगा, तब गांव के बुजुर्गों ने लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि पानी केवल वर्तमान जरूरत नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी जिम्मेदारी है। गांव वालों ने वर्षा जल संचयन की व्यवस्था बनाई, तालाब की सफाई की और पानी के उपयोग के नियम तय किए।
1: बिल्कुल।
0: अगले वर्ष बारिश का पानी बेहतर ढंग से जमा होने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है लेकिन उसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। यही सीख आज के समय में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब जल संरक्षण, मिट्टी की गुणवत्ता और पर्यावरण संतुलन हमारे सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है तो इन बातों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहेंगे कि कहावतों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे केवल पुराने समय के लिए नहीं, उनका सही अर्थ समझकर आज के जीवन में भी उपयोग किया जा सकता है। सोच समझकर कदम उठाना हमें निर्णय लेने से पहले परिणामों पर विचार करना सिखाता है।
0: बिल्कुल।
1: जल्दी का काम शैतान का हमें याद दिलाता है कि बिना पर्याप्त ध्यान दिए काम करने से गलतियां हो सकती है। इसी प्रकार जैसा देश वैसा भेष का भाव ये है कि किसी स्थान की परिस्थिति और स्थानीय रीति रिवाजों को समझना चाहिए। इसका अर्थ अपनी पहचान छोड़ना नहीं बल्कि दूसरों की संस्कृति का सम्मान करना है। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से बस यही कहना चाहेंगे कि आपने अपने घर या गांव में ऐसी कौन सी कहावत सुनी जो आज भी आपको जीवन में सही रास्ता चुनने की प्रेरणा देती है। क्या आपको अपने दादा दादी नाना नानी या गांव के किसी बुजुर्ग की सुनाई हुई कोई ऐसी लोक कथा याद है जिसकी सीख आप आज भी नहीं भूले हैं? आप अपनी कहावत, उसका अर्थ और उससे जुड़ा अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हो सकता है श्रोता साथियों कि आपके द्वारा साझा की गई एक छोटी सी कहानी किसी दूसरे श्रोता के जीवन में भी नई समझ पैदा कर सकती है। इसलिए याद रखिए, हर परिवार के पास एक कहानी है और हर कहानी में कोई न कोई सीख छिपी हो सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और आज की इस चर्चा से हमने यही जाना कि कहावतें और लोक कथाएं हमारे समाज की अनुभव संपदा है। वे हमें मेहनत करना, धैर्य रखना, दूसरों का सहयोग करना, प्रकृति की रक्षा करना और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना सिखाती है।
1: बिल्कुल।
0: और अंजलि, हमारे श्रोता साथी को हम ये भी कहना चाहेंगे कि लोक कथाएं हमारी विरासत है, कहावतें हमारा अनुभव है और उनसे मिली अच्छी सीख हमारे बेहतर भविष्य की नींव है।
1: बिल्कुल। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जोनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है संक्रमण से बचाव में घर की रोजमर्रा की चीजों की सफाई कितनी जरूरी है इसको लेकर, क्योंकि हम सभी अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहते हैं। सुबह उठते ही घर में झाड़ू लगाना, आंगन साफ करना, बर्तन धोना, कपड़ों को व्यवस्थित रखना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन श्रोता साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर को हम साफ मानते हैं वहाँ इस्तेमाल होने वाली रोजमर्रा की चीजों पर भी गंदगी और संक्रमण फैलने वाले सूक्ष्मजीव मौजूद हो सकते हैं? जरा सोचिए कि सुबह उठते ही हम सबसे पहले अपने मोबाइल फोन को हाथ लगाते हैं, फिर रसोई में जाकर सब्जियां काटते हैं, पानी का बर्तन छूते हैं, दरवाजे की कुंडी खोलते हैं और बच्चों को खाना खिलाते हैं। इन सभी कामों के दौरान मनीषा हमारे हाथ कई चीजों को छूते हैं। यदि इन चीजों की नियमित सफाई न हो और हाथों की स्वच्छता का ध्यान न रखा जाए तो संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि घर की किन चीजों की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, सफाई करने का सही तरीका क्या है और किन छोटी छोटी आदतों को अपनाकर हम अपने परिवार को बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं संक्रमण से बचाव, घर की रोजमर्रा की चीजों की सफाई रखना क्यों जरूरी है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों में कुछ बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद शामिल होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इनमें से कुछ हमारे आसपास की सतहों पर कुछ समय के लिए जीवित रह सकते हैं। जब कोई व्यक्ति श्रोता साथियों खांसता है, छींकता है या गंदे हाथों से किसी वस्तु को छूता है, तो अंजलि जी हम देखते हैं कि कुछ परिस्थितियों में संक्रमण फैलाने वाले जीव उन सतहों पर पहुंच सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसके बाद श्रोता साथियों, यदि दूसरा व्यक्ति उसी वस्तु को छूकर बिना हाथ धोए मुंह, नाक या आंखों को छू ले, तो अंजलि जी हम देखते हैं कि संक्रमण का खतरा है वो पैदा हो सकता है। हालांकि श्रोता साथियों, हर गंदी वस्तु से बीमारी नहीं फैलती है और संक्रमण सतहों के माध्यम से भी नहीं फैलता है। कई संक्रमण हवा, दूषित भोजन या पानी के जरिए भी फैलते हैं। यही कारण है साथियों कि घर की सफाई केवल घर की सुंदरता दिखाने के लिए नहीं होती है, बल्कि स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। हमारे घर में छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति भी होते हैं। ऐसे में श्रोता साथियों, साफ सफाई के प्रति लापरवाही उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमें सफाई को किसी एक दिन का काम नहीं समझना है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदत हमें बनानी है।
1: बिल्कुल मनीषा, यही बात करते हैं रसोई की सफाई क्यों है सबसे जरूरी। तो साथियों, रसोई वह जगह है जहां हमारे परिवार के लिए भोजन तैयार होता है। भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा और पोषण मिलता है, लेकिन यदि भोजन बनाने की

कल्पना कीजिए श्रोता साथियों कि हमने कच्ची सब्जी को काटने के लिए जिस चॉपिंग बोर्ड या किसी भी चीज का इस्तेमाल किया है उसको अच्छी तरह साफ किए बिना उस पर खाने के लिए तैयार भोजन अगर हम रख दे तो ऐसा करने से हानिकारक सूक्ष्म जीव भोजन तक पहुँच सकते हैं। इसलिए हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि खाना बनाने से पहले और बाद में हाथ साबुन से धोएं, कच्ची सब्जी और खाने

0: रूप से साफ करें और सूखने दें। कूड़ेदान को ढककर रखें और नियमित रूप से खाली करके साफ करें। पीने के पानी को साफ ढके हुए बर्तन में रखें और पानी निकालने के लिए साफ बर्तन का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि श्रोता साथियों, रसोई में सफाई का अर्थ केवल फर्श का पानी डालना नहीं, भोजन बनाने और रखने वाली जगहों को साफ करना भी उतना ही जरूरी है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं, तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो

0: जी हाँ।
1: इसी तरह दरवाजे की कुंडी, बिजली की स्विच, मेज कुर्सी के हत्थे और पानी के नल को परिवार के कई सदस्य छूते हैं। इन चीजों की नियमित सफाई करने से संक्रमण फैलने का खतरा कम करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि मनीषा मोबाइल फोन की सफाई करते समय उसकी कंपनी के निर्देश जो हैं उनका भी पालन करना हमारे लिए जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: फोन को साफ करने से पहले चार्ज निकाल दें, मुलायम और

0: ध्यान रखें कि सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी उत्पाद हर सतह के लिए सुरक्षित नहीं होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए उत्पाद के लेवल पर दिए गए निर्देश पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यहीं अगर बात करेगी कपड़े, तौलिए और बिस्तर की सफाई की, तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हम दिन भर जिन कपड़ों को पहनते हैं वे पसीने, धूल और गंदगी के संपर्क में आते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इस तरह तौलिया, रूमाल, चादर और तकिए के कवर की नियमित सफाई करना भी हमारे लिए जरूरी है। यदि परिवार में किसी सदस्य को त्वचा का संक्रमण, आंखों का संक्रमण या कोई अन्य संक्रमण बीमारी है तो व्यक्तिगत वस्तुओं को साझा करते समय हमें बचना चाहिए। कपड़े और तौलियों को उनकी जरूरत, इस्तेमाल

0: साथ ही कहना चाहेंगे साथियों कि नम कपड़ों को लंबे समय तक बंद जगह पर हमें नहीं रखना चाहिए। इससे अंजलि जी हम देखते हैं कि दुर्गंध और फफूंद की समस्या है वो बढ़ सकती है। साथ ही साथियों बच्चों के कपड़े, तौलिए और बिस्तर को भी हमें साफ रखना है। यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी व्यक्तिगत वस्तुओं की सफाई रखना भी हमारे लिए जरूरी है। लेकिन श्रोता साथियों इसका अर्थ यह नहीं है कि हर वस्तु को रोज धोना जरूरी है। सफाई की आवृत्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु का इस्तेमाल कितना हो रहा है और कितनी गंदी हो रही है, इसके अनुसार ही हमें उसकी सफाई करनी है।
1: बिल्कुल मनीषा आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को बाथरूम और शौचालय की सफाई के बारे में बताएं। श्रोता साथियों बाथरूम और शौचालय ऐसी जगह है जहां सफाई पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। यहां नमी अधिक होने के कारण कुछ प्रकार के सूक्ष्म जीव और फफूंद पनप सकते हैं। यदि शौचालय की सफाई ठीक से न की जाए, हाथ न धोए जाए या गंदे कपड़ों और तौलियों को लंबे समय तक नम रखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए शौचालय की सीट, फ्लश का बटन, नल और दरवाजे की कुंडी की नियमित सफाई करें। बाथरूम को यथासंभव सूखा और हवादार रखें। इस्तेमाल के बाद तौलियों को सुखाएं और समय समय पर धोएं। शौचालय इस्तेमाल करने के बाद सफाई करने के बाद हाथों को साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। एक बहुत जरूरी बात याद रखें कि

0: ऐसा करने से जहरीली गैस निकल सकती है जो जानलेवा भी हो सकती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए सफाई के इस्तेमाल को हमेशा उसके निर्देशों के अनुसार ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि बच्चों के खिलौने की सफाई रखना क्यों जरूरी है इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि घर में छोटे बच्चे हैं वो खिलौना खेलते हैं, उन्हें हाथ लगाते हैं और कई बार मुंह में भी अंजलि जी डाल देते हैं। ऐसे में श्रोता साथियों खिलौनों की सफाई करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बच्चों के खिलौने उनकी उम्र और उनकी सामग्री के अनुसार हम साफ कर सकते हैं। प्लास्टिक के खिलौनों को निर्माता के अनुसार धोकर अच्छी तरह से सुखाया जा सकता है। कपड़े के खिलौनों को श्रोता साथियों उनके लेबल के अनुसार हम धो सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: यदि कोई खिलौना जमीन पर गिर जाए या बच्चा उसे मुंह में डाल ले तो श्रोता साथियों जरूरत के अनुसार उसे साफ करें। बीमार बच्चे द्वारा इस्तेमाल किए गए खिलौनों की सफाई करना भी हमारे लिए जरूरी है।
0: बिल्कुल मनीषा, यही बात करें तो हमें पानी और बर्तनों का भी इसी तरह स्वच्छता का ध्यान रखना है। यही हम देखते हैं कि घर की सफाई करते समय हम कई सारी गलतियां कर देते हैं, जैसे कि पहली गलती करते हैं कि केवल दिखाई देने वाली गंदगी ही साफ करते हैं। हमें उन जगहों पर भी ध्यान देना चाहिए जिन्हें बार बार छुआ जाता है, जैसे कि नल, स्विच, मोबाइल और दरवाजे की कुंडी। दूसरी गलती करते हैं कि गंदे कपड़े से कई जगह सफाई करना, एक ही गंदे कपड़े को

0: जी हाँ,
1: तीसरी गलती करते हैं सफाई के बाद हाथ न धोना। श्रोता साथियों, कूड़ा उठाने, शौचालय साफ करने या गंदी सतहों को साफ करने के बाद हाथ साबुन और पानी से धोना बहुत जरूरी है, इसलिए इस गलती को भी हमें दोबारा नहीं करना है। चौथी गलती हम करते हैं मनीषा के, बहुत अधिक रसायनों का इस्तेमाल कर देते हैं।
0: जी हाँ।
1: ज्यादा रसायनों का इस्तेमाल करते समय हम देखते हैं कि कुछ जहरीली गैस जो है वो हमारे नाकों में, आंखों में जाकर समस्या पैदा कर सकती है, इसलिए उत्पाद पर लिखी मात्रा और सावधानी का हमें ध्यान रखने की जरूरत है।
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ हमें घर के सभी सदस्यों को अपनी उम्र और क्षमता के अनुसार सफाई में सहयोग करने के लिए प्रेरित करना है, इससे काम का बोझ भी कम होता है और परिवार में स्वच्छता की सामूहिक आदत भी विकसित होती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि संक्रमण से बचाव के लिए कुछ छोटी और प्रभावी आदतें हैं जिन्हें हम जीवन का हिस्सा हम बना सकते हैं, जैसे कि साथियों खाना बनाने, खाने से पहले या शौचालय इस्तेमाल के बाद हमें हाथ ही वो साबुन से धोने हैं।
1: जी जी।
0: रसोई और खाने की जगहों को हमें साफ रखना है। साथ ही साथियों मोबाइल, दरवाजे की कुंडी, नल और स्विच जैसी जो चीजें होती है उन्हें भी हमें समय समय पर साफ करना है। भोजन को ढक कर रखें और कच्चे या पक्के भोजन को अलग रखें। तौलिये और रुमाल और व्यक्तिगत जो इस्तेमाल होने वाली वस्तु है उन्हें भी समय पर धोना हमारे लिए जरूरी है। साथ ही साथियों कहना चाहेंगे कि पीने के पानी को हमें सुरक्षित रखना है और कूड़े का निपटान है वो हमें सुरक्षित तरीके से करना है। घर में हवा और रोशनी आने दें और नमी वाले जगहों को हमें सुखाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथियों अगर हम सफाई के लिए कुछ रसायनों का उपयोग करते हैं तो उन्हें हमें बच्चों से दूर रखना है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से संक्रमण का खतरा जो है वो हमारे घर की रोजमर्रा की चीजों से हमें हो सकता है, तो उनका ध्यान हमें कैसे रखना है और सफाई कैसे करने की जरूरत है। यही अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
1: नमस्कार।

नमस्कार श्रोता साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जी हां श्रोता साथियों, इंसान की एक खूबसूरत आदत है कि वह हमेशा आगे बढ़ना चाहता है। हम अपने जीवन में कुछ बेहतर पाने के सपने देखते हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, सफलता, पैसा, पहचान और एक बेहतर भविष्य, इन सबकी इच्छा रखना बिल्कुल भी गलत नहीं है श्रोता साथियों। लेकिन कई बार हम उस चीज के पीछे भागने लगते हैं जो हमारे पास नहीं है, कि हमारे पास पहले से जो कुछ है उसकी कीमत हम भूल जाते हैं। हम श्रोता साथियों सोचते रहते हैं कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती, काश मुझे वो मौका मिल जाता। इसी सोच में हम यह देखना भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी में आज भी बहुत कुछ ऐसा है जो कभी हमारी इच्छा हुआ करता था। इसलिए आज का हमारा विषय है साथियों, जो मिला नहीं उसके पीछे भागने से पहले जो है उसकी कद्र करें। तो श्रोता साथियों, इस विषय को लेकर कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुकी हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं जो मिला नहीं उसके पीछे भागने से पहले जो है उसकी कद्र करें। जी हाँ श्रोता साथियों, हम इंसानों की आदत है कि जो चीज हमारे पास होती है उसकी आदत पड़ जाती है, और जो चीज हमारे पास नहीं होती है वह ज्यादा खास लगने लगती है। जिसके पास श्रोता साथियों साधारण मोबाइल है वह महंगा मोबाइल फोन चाहता है, जिसके पास छोटी नौकरी है वह बड़ी नौकरी चाहता है, जिसके पास छोटा घर है वह बड़ा घर चाहता है। जिसे एक सफलता मिल गई श्रोता साथियों, वह दूसरे सफलता के पीछे भागने में लगा रहता है। आगे बढ़ने की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन अगर इसी दौड़ में हम अपनी वर्तमान जिंदगी की खुशियाँ भूल जाएं तो समस्याएं शुरू हो जाती हैं। हमें ये समझना होगा कि सपने देखना जरूरी है, लेकिन वर्तमान की कद्र करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। साथ ही श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहूंगी कि जरा अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। हो सकता है कुछ समय पहले आप जिस चीज की इच्छा करते थे वह आज आपके पास हो, जिस नौकरी के लिए आपने कभी कोशिश की थी वह आपके पास है, जिस पढ़ाई को पूरा करने का सपना देखा था वह पूरा हो चुका है, जिस चीज को पाने के लिए आपने मेहनत की थी वह आज आपकी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन श्रोता साथियों, अब हम उनकी खुशियाँ महसूस नहीं करते क्योंकि हमारा ध्यान ही वो अगली चीजों पर चला गया है। इसलिए श्रोता साथियों, कभी कभी रुक कर अपने आप से पूछना चाहिए, मैंने जो पाया है उसके लिए क्या

ने कभी सपना देखा था? यह सवाल हमें अपनी जिंदगी की बहुत से छोटी बड़ी खुशियों का एहसास करा सकता है। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहूंगे कि यहाँ एक बात साफ समझना बहुत जरूरी है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आपको बेहतर नौकरी चाहिए तो मेहनत कीजिए, अगर आपको पढ़ाई में आगे जाना है तो तैयारी कीजिए, अगर आपको अपना घर बनाना है तो उसके लिए योजनाएं बनाइए, अगर आपका कोई बड़ा सपना है तो उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। लेकिन श्रोता साथियों आगे बढ़ते हुए अपने वर्तमान जिंदगी को कम मत समझिए, नई मंजिल की तरफ बढ़िए लेकिन पुरानी मंजिलों की खुशियां मत भूलिए, क्योंकि श्रोता साथियों जिंदगी सिर्फ उस दिन का नाम नहीं है जब हमें अपना लक्ष्य मिलेगा, जिंदगी आज भी है और आज का समय वापस नहीं आएगा। साथ ही साथियों आज सोशल मीडिया और आसपास के माहौल में हम लगातार दूसरों की जिंदगी को देखते हैं। किसी की अच्छी नौकरी देखकर लगता है कि हमारी नौकरी छोटी है, किसी का सुंदर घर देखकर लगने लगता है कि हमारा घर अच्छा नहीं है, किसी की सफलता देखकर हमें अपनी मेहनत कम लगने लगती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं साथियों कि हमें दूसरे व्यक्ति की पूरी कहानी पता नहीं, हमें सिर्फ उसकी सफलता दिखाई देती है, उसकी परेशानियाँ, संघर्ष, असफलताएं और मेहनत दिखाई नहीं देती। इसलिए दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना करने के बजाय अपनी यात्रा को देखिए, अपने आप से पूछिए क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर हुआ हूँ। अगर जवाब हाँ है तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। खुशी हमेशा श्रोता साथियों बड़ी चीजों से नहीं मिलती है, परिवार के साथ बैठकर खाना खाना भी एक खुशी है, किसी अपने का हाल पूछना भी श्रोता साथियों खुशी है, सुबह का शांत समय भी खुशी है, अपने काम को ईमानदारी से पूरा करना भी खुशी है, किसी की मदद कर पाना भी खुशी है, अपनी मेहनत से कुछ सीखना भी खुशी है। कई बार हम बड़ी खुशी की तलाश में छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि श्रोता साथियों जिंदगी इन्हीं छोटी खुशियों से मिलकर बनती है। कई लोगों को लगता है कि अगर हम अपनी वर्तमान जिंदगी से संतुष्ट हैं तो फिर आगे बढ़ने की इच्छा कैसे रखेंगे। लेकिन संतोष का मतलब श्रोता साथियों यह नहीं है कि हम आगे बढ़ना ही छोड़ दें। संतोष का मतलब है जो मेरे पास है उसकी कद्र करते हुए जो बेहतर चाहिए उसके लिए मेहनत करना। हम एक साथ दो बातें कर सकते हैं, हम अपने आज के लिए आभारी भी रह सकते हैं और अपने कल के लिए मेहनत भी कर सकते हैं। यही संतुलन श्रोता साथियों जीवन को बेहतर बनाता है। जैसा कि श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं, तो ये बातें आगे भी ऐसे ही निरंतर जारी रहेंगी। लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के इस गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रही थी, जो मिला नहीं उसके पीछे भागने से पहले जो है उसकी कद्र करें। तो कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, हमने ढेर सारी बातों को जाना था। जो है वही हमारा कभी सपना हुआ करता था, आगे बढ़ना गलत नहीं है और छोटी खुशियों की भी हमें कदर करनी चाहिए। यही श्रोता साथियों, बात करते हैं अपने पास मौजूद लोगों की कदर हम कैसे करें इसकी। तो श्रोता साथियों, कहना चाहूंगी कि कई बार हम चीजों की तलाश में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने रिश्तों की तरफ ध्यान देना ही भूल जाते हैं। परिवार के लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं, दोस्त मुश्किल समय में हमारा साथ देते हैं, कोई हमें समझता है, कोई हमारी हिम्मत बढ़ाता है, लेकिन श्रोता साथियों, हम अक्सर उनकी मौजूदगी को सामान्य मान लेते हैं। इसलिए अपने लोगों की कद्र कीजिए, कभी कभी उनसे कहिए आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि श्रोता साथियों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें खोने के बाद उनकी कीमत समझ आती है। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो हमें नहीं मिलेंगी, हर इच्छा पूरी नहीं होगी, हर सपना उसी रूप में पूरा नहीं होगा जैसा हमने सोचा था, हर अवसर हमारे हिस्से में नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी जिंदगी अधूरी है। कभी कभी जो चीजें हमें नहीं मिलती है उसके पीछे कोई दूसरा रास्ता हमारा इंतजार कर रहा होता है। इसलिए जो नहीं मिला है उसका दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन उसी दुख में पूरी जिंदगी को रोक देना सही नहीं है। खुद से कहिए श्रोता साथियों, जो मिला है उससे मैं सीखूंगा, जो मिला है उसकी कद्र करूंगा, जो पाना है उसके लिए मेहनत करूंगा। जी हाँ श्रोता साथियों, आज रात आपको जब भी थोड़ा समय मिले, एक कागज पर तीन चीजें जरूर लिखिए। पहली, मेरे पास आज क्या क्या है उसके लिए मैं आभारी हूँ। दूसरी, मेरे जीवन में कौन कौन से लोग मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। तीसरी, मुझे आगे क्या हासिल करना है और उसके लिए मेरा अगला छोटा कदम क्या होगा। जब श्रोता साथियों हम इन तीनों चीजों को समझ लेते हैं तो हमारी सोच है वो बदलने लगती है, कि हमें पता चलता है कि हमारे पास बहुत कुछ है और आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। जी हाँ श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगी, आज हमारी बात का सार यही है, सपने देखिए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, लेकिन अपने आज को मत भूलिए। जो नहीं मिला उसके पीछे जरूर जाइए, लेकिन इतना नहीं कि जो आपके पास ही उसकी खुशी है वो खत्म हो जाए। क्योंकि श्रोता साथियों, जिंदगी केवल भविष्य की मंजिल नहीं है, जिंदगी आज का पल भी है। इसलिए अपने परिवार की कद्र कीजिए, अपने समय की कद्र कीजिए, अपने आप की कद्र कीजिए, अपने पास मौजूद अवसरों की कद्र कीजिए और सबसे जरूरी श्रोता साथियों, खुद की कद्र करना सीखिए। याद रखिए, जो मिला नहीं वह हमारी कमी नहीं बताता, जो मिला है उसकी कद्र करना हमारी जिम्मेदारी बताता है। तो श्रोता साथियों, सपने जरूर देखिए, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी कीजिए, लेकिन अपने आप को इतना छोटा मत समझिए कि कल की तलाश में आज की खुशी आप खो दें। इसी खूबसूरत सोच के साथ में श्रोता साथियों, आज के कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में मेरी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: ई आबावारा काल ने बदलाव की शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: जागृति बोन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाए
0: नाना अंजलि बोन हूँ था का
2: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
0: ओ अंजलि बोन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी तो किस आपड़ो जीवन है
2: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
0: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा
2: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
0: वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेषर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि माँ ब्रह्मचर्य से प्रेरणा, कठिन परिस्थितियों में धीर और संकल्प कैसे बनाकर रखें। जी हाँ श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं तो कभी ऐसा समय आता है जब मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती।
0: बिल्कुल।
1: कभी परिवार की जिम्मेदारियां हमारे सपनों के बीच आ जाती हैं, तो कभी आर्थिक परेशानियां हमें कमजोर महसूस करवाती हैं, तो कभी दूसरों की बातें हमारे आत्मविश्वास को हिला देती हैं।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे समय में श्रोता साथियों, मन में एक सवाल उठता है कि क्या मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगा, क्या मेरी मेहनत सफल होगी, क्या मुझे अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। ऐसे ही समय में हमें जरूरत होती है धैर्य रखने की, अपने मन को मजबूत बनाने की और अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास बनाकर रखने की।
0: बिल्कुल।
1: नवरात्रि में पूजी जाने वाली माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में माँ ब्रह्मचर्य का स्वरूप हमें तपस्या, त्याग, संयम और अटूट संकल्प की प्रेरणा देता है।
0: जी हाँ अंजलि जी,
1: उनका स्वरूप हमें सिखाता है कि किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए केवल इच्छा होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके लिए लगातार प्रयास करना और कठिन समय में भी अपने रास्ते पर टिके रहना जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: आज के विशेष कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं कि माँ ब्रह्मचर्य से प्रेरणा लेते हुए हम अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में धैर्य संकल्प कैसे बनाकर रखें और अपने सपनों की ओर कदम कैसे बढ़ाते रहें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस विषय पर बातचीत हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो आपको हम बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी से प्रेरणा, कठिन परिस्थितियों में हम धैर्य का संकल्प कैसे ले सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, आज का जो ये हमारा विषय है वो हमारे जीवन की चुनौतियों, संघर्ष और मुश्किल समय से गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी ऐसी परिस्थितियों से तो गुजरता ही है जब उसे लगता है कि अब आगे बढ़ना उसके लिए काफी मुश्किल है।
1: बिल्कुल,
0: कभी श्रोता साथियों, मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं वो भी काफी परेशान हो जाते हैं और कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही। कभी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती और कभी परिवार की जिम्मेदारियां हमें थका देती है, तो कभी श्रोता साथियों आर्थिक परेशानियां हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि लोग बहुत ज्यादा परेशान होकर, निराश होकर बैठ जाते हैं और वे अपने भविष्य को कह सकते हैं कि देख नहीं पाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वे आगे अब नहीं बढ़ पाएंगे और उनके अंदर नकारात्मक बातें चलने लगती हैं। अंजलि जी,
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही हम बात करें कि माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या, साधना और अटूट निष्ठा को उनके स्वरूप की प्रमुख विशेषता माना जाता है।
0: जी हाँ,
1: उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। उनका स्वरूप हमें संयम, साधना और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहने का संदेश देता है।
0: बिल्कुल,
1: माँ ब्रह्मचारिणी से मिलने वाली सबसे बड़ी प्रेरणा यह है कि जब हम किसी लक्ष्य को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं तो उसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। रास्ते में परेशानियां आए, परिणाम मिलने में देर हो या परिस्थितियां हमारे मन के अनुसार न हो, फिर भी हमें अपनी कोशिशों को पूरी तरह नहीं छोड़ना चाहिए।
0: जी हाँ,
1: आज के जीवन में भी इस सीख का बहुत महत्व है कि कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कोई महिला अपने परिवार के साथ नौकरी की जिम्मेदारियां निभा रही है, कोई किसान अपनी फसल के लिए मेहनत कर रहा है और कोई युवा रोजगार पाने की कोशिश कर रहा है।
0: बिल्कुल,
1: हर व्यक्ति के संघर्ष अलग है लेकिन आगे बढ़ने के लिए धैर्य और संकल्प सभी के लिए जरूरी है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि कठिन परिस्थितियों में सबसे पहले हमारा धैर्य ही कमजोर पड़ता है।
0: जी हाँ,
1: जब कोई काम हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होता तो हम जल्दी निराश हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कई बार हम दूसरों की सफलता देखकर अपनी मेहनत को छोटा समझने लगते हैं। हमें लगता है कि दूसरे लोग आगे निकल गए और हम वहीं के वहीं रह गए।
0: जी हाँ,
1: लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां, जिम्मेदारियां और आगे बढ़ने की गति अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है तो किसी को अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अधिक समय और मेहनत की जरूरत पड़ती है।
0: बिल्कुल,
1: उसका अर्थ ये नहीं है कि देर से मिलने वाला जो व्यक्ति है वो सफल कभी नहीं होगा। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमें यह प्रेरणा देता है कि अपने उद्देश्य के प्रति स्थिर रहें। धैर्य रखने का अर्थ यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। धैर्य का सही अर्थ है कि हम घबराहट में गलत निर्णय न लें बल्कि परिस्थितियों को समझे, समाधान खोजने की कोशिश करते रहें। यदि आज किसी काम में सफलता नहीं मिली है तो यह सोचने के बजाय कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमें यह सोचना चाहिए कि अगली बार हम क्या बेहतर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि जब व्यक्ति निराश होता है तो उसके मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं कि जब रास्ता कठिन हो गया है तो धैर्य कैसे बनाकर रखूं?
1: बिल्कुल,
0: जब मुझे बार बार असफलता मिल रही है तो संकल्प को कमजोर होने से कैसे बचाऊं? जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है तो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की शक्ति कहां से लाएं? दोस्तों, इन सभी सवालों का उत्तर पाने के लिए माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के जीवन संदेश से प्रेरणा ले सकते हैं। वो कैसे? तो माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग, साधना, धैर्य और अटूट संकल्प की प्रतीक मानी जाती है। अंजलि जी,
1: बिल्कुल,
0: उनका स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इच्छा करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसके लिए निरंतर प्रयास करना होता है, आत्मसंयम रखना होता है और कठिन परिस्थितियों में भी अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहना जरूरी होता है।
1: बिल्कुल कशिश, तो इस तरीके से हम श्रोता साथियों को कह सकते हैं कि अगर हम नए साल, त्योहार या किसी खास दिन पर अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं, कोई पढ़ाई शुरू करने का निर्णय करता है तो कोई बचत करने का, कोई अपनी सेहत पर ध्यान देने का, तो कोई अपने परिवार के साथ बेहतर व्यवहार करने का वादा करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही हम अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संकल्प लेना आसान है लेकिन उसे रोजमर्रा के जीवन में निभाना कठिन लगता है। जब उत्साह कम होता है या काम का दबाव बढ़ता है तो हमारा मन लक्ष्य से हटने लगता है। माँ ब्रह्मचारी तारिणी से प्रेरणा लेकर हमें ये समझना चाहिए कि संकल्प को लेकर शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: उसे अपने व्यवहार में उतारना चाहिए। यदि हमने पढ़ाई करने का निर्णय लिया है तो रोज थोड़ा समय पढ़ना चाहिए। यदि हमने पैसे बचाने का संकल्प लिया है तो अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब रखना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: यदि हमने परिवार में प्रेम बनाए रखने का निर्णय लिया है तो गुस्से के समय में भी अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि,
1: छोटे छोटे कदम जब नियमित रूप से उठाए जाते हैं कशिश, तब वे बड़े बदलाव का आधार बनते हैं। इसलिए संकल्प चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे निभाने के लिए नियमितता जरूरी है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो श्रोता साथियों, माँ ब्रह्मचारिणी को माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से दूसरा स्वरूप माना जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन और कठोर तपस्या की थी। अंजलि जी, उनकी तपस्या, त्याग और अटूट संकल्प के कारण उन्हें तप और साधना की देवी के रूप में पूजा जाता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। श्रोता साथियों, जपमाला निरंतर साधना, एकाग्रता और अनुशासन का प्रतीक है, जबकि जो कमंडल है वो सादगी, संयम और संतुलित जीवन का संदेश हमें देता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ की ओर। जैसे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है, यही श्रोता साथियों बात करते हैं, संकल्प का अर्थ केवल वादा करना नहीं बल्कि उसे निभाना भी है। जी हाँ श्रोता साथियों, जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि माँ ब्रह्मचारिणी से प्रेरणा लेकर हमें ये समझना चाहिए कि संकल्प को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखना है, उसे अपने व्यवहार में भी उतारना है। यही अब बात आती है मनीष कशिश कि जब परिस्थितियां साथ न दे तब हम खुद पर विश्वास कैसे करें। श्रोता साथियों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। कभी परिस्थितियों में बीमारी आ जाती है, कभी आर्थिक परेशानी बढ़ जाती है, कभी नौकरी नहीं मिलती और कभी मेहनत करने के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हर परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती। कठिन समय में अपने मन को यह समझाना जरूरी है कि आज की परेशानी हमारे पूरे भविष्य का फैसला नहीं करती।
1: बिल्कुल,
0: आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए अपनी पिछली उपलब्धियों को याद करें। आपने पहले भी कई समस्याओं का समाधान किया होगा, कभी आपने कोई मुश्किल काम सीखा होगा, कभी परिवार की जिम्मेदारी निभाई होगी और कभी किसी परेशानी से निकलने का रास्ता खोजा होगा। ये अनुभव बताते हैं कशिश कि आपके भीतर परिस्थितियों में जूझने की क्षमता है। माँ ब्रह्मचारिणी के तप और साधना से प्रेरणा लेते हुए हम अपने मन को मजबूत बना सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम खुद से कह सकते हैं कि मैं अपनी परिस्थिति को समझूंगा, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा और अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास जारी रखूंगा।
1: जी हाँ,
0: समय पर विश्वास रखने का अर्थ यह नहीं है श्रोता साथियों कि हमें कभी डर नहीं लगेगा।
1: बिल्कुल,
0: इसका अर्थ है कि डर होने के बावजूद हम सही दिशा में कदम उठाने का साहस रखें।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, ऐसे में माँ ब्रह्मचारिणी का जीवन हमें ये सिखाता है कि किसी भी बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य रखना, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना और परिस्थितियों से हार न मानना बहुत जरूरी है। साथ ही उनकी तपस्या केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है बल्कि जीवन में दृढ़ निश्चय, इच्छा शक्ति और आत्मबल विकसित करने की प्रेरणा भी देता है।
0: बिल्कुल,
1: हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता और कभी हमारे सामने खुशियां होती है तो कभी दुख और परेशानियां भी होती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है अंजलि जी कि हमारे जो प्रयास है वो सफल होते होते भी रह जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो कभी कभी हमें बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में दोस्तों कई लोग निराश होकर अपने लक्ष्यों को छोड़ देते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि कठिन परिस्थितियां जो होती है वो हमारे जीवन का अंत नहीं होती, बल्कि वे हमें कुछ नया सीखने और स्वयं को मजबूत बनाने का अवसर देती है।
0: बिल्कुल कशिश, आज के समय में दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कम समझने की आदत बढ़ती जा रही है। कोई नया घर बना रहा है, कोई अच्छी नौकरी पा रहा है, कोई अपना व्यवसाय शुरू कर रहा है और कोई अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। यह सब देखकर कई बार हम अपनी उपलब्धियों को भूल जाते हैं। हम यह नहीं देखते कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हमने किन कठिनाइयों का सामना किया है और अब तक कितना दूर आए हैं। दूसरों से लगातार तुलना करने के कारण मन में असंतोष पैदा होता है और अपने लक्ष्य के प्रति उत्साह भी कम होने लगता है।
1: जी हाँ,
0: माँ ब्रह्मचारिणी का संदेश हमें अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहने की प्रेरणा देता है। यदि हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो हमें अपनी ऊर्जा दूसरों से आगे निकलने में नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में लगानी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: कल की तुलना में आज एक नई बात सीखना, अपने काम को थोड़ा बेहतर करना, समय का सही उपयोग करना और अपनी गलतियों को सुधारना भी प्रगति है।
1: बिल्कुल,
0: जरूरी नहीं है कि हर दिन कोई बड़ी उपलब्धि मिले, कई बार छोटी सी सुधार की आदत ही बड़े भविष्य की ओर परिणाम हमें दे सकती है। इसलिए श्रोता साथियों, अपनी यात्रा का सम्मान करें, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, लेकिन अपनी योग्यता और परिस्थितियों को कम ना आंकें।
1: बिल्कुल अंजलि जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। यही इस बात को अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझे तो यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसे अपनी पढ़ाई छोड़ने के बजाय अपनी गलतियों को समझ कर दोबारा से प्रयास करने की जरूरत होती है। श्रोता साथियों, माँ ब्रह्मचारिणी हमें ये प्रेरणा देती है कि परिस्थितियां चाहे हमारे सामने जैसी भी हो, हम असफल भी क्यों ना हो जाए श्रोता साथियों, हमें अपने आत्मविश्वास और संकल्प को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अंजलि जी हम देखते हैं कि आज हमारे जो युवा साथी हैं वो आधुनिक दौर में जी रहे हैं। ऐसे में आधुनिक दौर में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और हमारे युवा साथियों को कई बार तो सफलता मिल जाती है लेकिन कई बार असफलता मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: और जैसे ही असफलता उन्हें मिलती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब वह आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण वो निराश होकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हमारे युवा साथियों, श्रोता साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो होता है दोस्तों, तो आपको कभी भी असफलता को अब अंत नहीं मानना है, अपने जीवन का अंत आपको असफलता को नहीं मानना है, बल्कि बार बार आपको प्रयास करना है।
0: बिल्कुल,
1: हो सकता है एक बार में आपको असफलता मिल रही है, दूसरी बार में भी आपको असफलता मिल रही है, लेकिन आप कोशिश करना जारी रखें। अगर आप कोशिश करना जारी रखते हैं दोस्तों, तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा कि आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं वो आपको जरूर मिलेगा।
0: बिल्कुल कशिश, हमारे ग्रामीण समाज में बहुत से लोग एक साथ कई जिम्मेदारियां निभाते हैं। महिलाएं घर का काम करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, कई बार खेतों या नौकरी में भी योगदान देती है।
1: बिल्कुल,
0: पुरुष परिवार की आर्थिक जरूरतों और अन्य जिम्मेदारियों को संभालते हैं। युवा पढ़ाई के साथ घर के कामों में हाथ बढ़ाते हैं, ऐसे में अपने लिए समय निकालना बहुत कठिन हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: कई लोग अपने सपनों को यह सोच कर पीछे छोड़ देते हैं कि पहले सारी जिम्मेदारियां पूरी होंगी फिर अपने बारे में सोचेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जिम्मेदारियां जीवन का हिस्सा है और वे हमेशा किसी न किसी रूप में बनी रहती हैं। इसलिए हमें अपने संकल्प को अपनी परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: यदि रोज 2 घंटे पढ़ना संभव नहीं है तो आधा घंटा पढ़ने से शुरुआत करें। यदि एक साथ बड़ी बचत नहीं हो सकती तो छोटी राशि बचाने की आदत डालें। यदि अपने स्वास्थ्य के लिए अधिक समय नहीं निकाल सकते तो रोज कुछ समय पैदल चलने या हल्का व्यायाम करने के लिए रखें। परिवार के सदस्यों से भी सहयोग मांगना जरूरी है। घर की जिम्मेदारियां बांटने से किसी एक व्यक्ति का सारा बोझ नहीं बढ़ता। अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों की मदद लेना भी जरूरी नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि दूसरों की मदद करना कमजोरी भी नहीं है, बल्कि समझदारी है। माँ ब्रह्मचारिणी से प्रेरणा लेकर हमें यह सीखना चाहिए कि संकल्प का मतलब अपनी परिस्थितियों को अनदेखा करना नहीं, बल्कि उन्हीं परिस्थितियों के बीच आगे बढ़ने का रास्ता निकालना है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही अगर बात करें तो श्रद्धा साथियों, धैर्य भी एक ऐसा ही गुण है जो कठिन परिस्थितियों में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अंजलि जी, धैर्य का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों में अपने मन को शांत रखना, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना और उचित समय तक प्रयास करते रहना।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में श्रद्धा साथियों, माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या हमें सिखाती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतरता के साथ साथ धैर्य भी जरूरी होता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे एक बीज से पौधा और फिर वृक्ष बनने में समय लगता है दोस्तों, ठीक वैसे ही जीवन में किसी भी अच्छे परिणाम के लिए समय, मेहनत और देखभाल जरूरी होती है। साथ ही हमें अपनी संकल्प शक्ति को भी पहचानना चाहिए, क्योंकि संकल्प का मतलब है किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय करना और ढेर सारी कठिनाइयों के बावजूद भी उस दिशा में लगातार प्रयास करते रहना। अंजलि जी,
0: बिल्कुल,
1: जब हम कोई संकल्प ले लेते हैं श्रोता साथियों, तो हमारा जो मन है वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति काफी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। केवल लक्ष्य निर्धारित कर लेना पर्याप्त हमारे लिए नहीं है, उसके लिए हमें नियमित रूप से कार्य भी करना होता है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो जैसा कि कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी और हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है कि बातचीत के साथ में हम बीच बीच में मनोरंजन की दुनिया में श्रोता साथियों को ले चलते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना एक और प्यारा सा गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है अंजलि जी, माँ ब्रह्मचारिणी के जीवन से हम किस प्रकार से प्रेरणा ले सकते हैं, और जो कुछ जरूरी गुण जो होते हैं, धैर्य और कठिन परिस्थितियों में असफलता को सफलता में बदलने के जो गुण होते हैं, उनको लेकर हम बातचीत कर रहे थे।
1: बिल्कुल।
0: यही अगर बात करें कि विविध परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का पालन हमें कैसे करना चाहिए, तो श्रोता साथियों, जीवन में कठिनाइयां आना कई बार हमारे मन अपने कर्तव्य से दूर भागने लगते हैं। हम सोचते हैं कि जब तक परिस्थितियां ठीक नहीं होंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अंजलि जी, वास्तव में कठिन समय में अपने आवश्यक कार्यों को छोटे छोटे चरणों में पूरा करना महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या हमें निरंतरता का संदेश देती है।
1: जी जी।
0: साथियों, उससे प्रेरणा लेकर हमें ये समझना चाहिए कि परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल होने की प्रतीक्षा करने के बजाय हमें उपलब्ध साधनों के साथ अपना श्रेष्ठ देने का प्रयास करना चाहिए।
1: बिल्कुल। कशिश कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि असफलता जीवन का ऐसा अनुभव है जिससे शायद ही कोई व्यक्ति पूरी तरह बच पाता है।
0: बिल्कुल।
1: किसी को परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिलते, किसी का व्यवसाय उम्मीद के अनुसार नहीं चलता, किसी को नौकरी के लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है, और किसी के बनाए हुए काम में रुकावट आ जाती है।
0: जी हाँ।
1: ऐसे समय में व्यक्ति अपने ऊपर सवाल उठाने लगता है, उसे लगता है कि शायद वह योग्य ही नहीं है या उसके प्रयासों का कोई लाभ नहीं होता। लेकिन एक असफल प्रयास से किसी व्यक्ति की पूरी क्षमता तय नहीं की जा सकती।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि असफलता हमें यह अवसर देती है कि हम अपनी तैयारी, अपनी योजना, अपने काम करने के तरीके की समीक्षा करें। हमें देखना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई है और अगली बार क्या सुधार किया जा सकता है।
0: जी हाँ।
1: उदाहरण के लिए कशिश, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में सफल नहीं हुआ तो उसे अपनी पढ़ाई की रणनीति बदलने, कठिन विषयों पर अधिक ध्यान देने और नियमित अभ्यास करने की जरूरत हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह यदि किसी छोटे व्यवसाय में नुकसान हो रहा है तो खर्च, बाजार की मांग और काम करने के तरीके को समझना जरूरी है। धैर्य का अर्थ एक ही गलती बार बार दोहराना नहीं है। सच्चा धैर्य वह है जिसमें व्यक्ति सीखता है, बदलता है और बेहतर तरीके से आगे बढ़ता है।
0: बिल्कुल।
1: माँ ब्रह्मचारिणी के संकल्प से प्रेरणा लेकर असफलता को अपनी मंजिल का अंत नहीं श्रोता साथियों, बल्कि आगे की तैयारी का एक अनुभव समझें।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी। साथ ही श्रोता साथियों, दूसरों की आलोचना और निराशाजनक बातों से प्रभावित भी हमें नहीं होना है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि कई बार अंजलि जी, हमारी सबसे बड़ी चुनौती बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि दूसरों के शब्द हो जाते हैं। जब हमें कोई नया कार्य आरंभ करना होता है तो कुछ लोग हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, जबकि कुछ लोग हमारे साथ ऐसे होते हैं जो हमारी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। दोस्तों, उनकी आलोचना सुनकर हमारा आत्मविश्वास कई बार कमजोर हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी का जीवन हमें अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। इससे हम सीख सकते हैं दोस्तों कि हमें हर व्यक्ति की राय को अपने जीवन का अंतिम निर्णय नहीं मानना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: उपयोगी आलोचना को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें अपनी गलतियां सुधारने में सहायता मिलती है। लेकिन निराधार नकारात्मक बातों के कारण अपने आत्मविश्वास को नष्ट हमें नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में हमेशा मजबूत बने रहना आसान नहीं होता।
0: बिल्कुल।
1: कभी मन थक जाता है, कभी चिंता बढ़ जाती है और कभी किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। श्रोता साथियों, ऐसे समय में स्वयं को कमजोर समझने के बजाय अपनी भावनाओं को समझना जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: सबसे पहले कुछ समय रुक कर अपनी परेशानियों को पहचाने या समझने की कोशिश करें कि आपको सबसे ज्यादा चिंता किस बात की है। क्या आर्थिक समस्या है, क्या परिवार में किसी बात को लेकर तनाव है, या फिर क्या काम का दबाव बढ़ गया है।
0: बिल्कुल।
1: जब समस्या स्पष्ट होती है कशिश, तो उसका समाधान खोजने में मदद मिलती है। अपनी परेशानी किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करना भी उपयोगी हो सकता है। कभी कभी किसी बात को सुन लेने, सही सलाह मिल जाने या काम में थोड़ी मदद मिलने से मन का जो बोझ है वो कम हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सहायता लेने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। श्रोता साथियों, अपने शरीर और मन का ध्यान रखना भी जरूरी है। पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन, नियमित दिनचर्या और कुछ समय आराम के लिए निकालना हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने में मदद करता है।
0: बिल्कुल।
1: याद रखिए कि धैर्य रखने का मतलब अपने दुख को छिपाना या हर परेशानी अकेले सहना नहीं है। अपने मन की देखभाल करना और जरूरत के समय सहायता लेना भी साहस का ही रूप है।
0: बिल्कुल अंजलि जी। ऐसे में श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि आज के हमारे युवा साथी ब्रह्म ब्रह्मचारिणी जी के जीवन से ढेर सारी प्रेरणा ले सकते हैं अंजलि जी, क्योंकि आज का जो देश है वो युवा का देश है, यानी कि युवा देश के भविष्य है। उनके भीतर अनेक सपने हैं, संभावनाएं हैं, लेकिन उनके सामने प्रतियोगिता भी है, बेरोजगारी की समस्या भी है, सामाजिक अपेक्षा और भविष्य की चिंता जैसी कई चुनौतियां भी हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे समय में माँ ब्रह्मचारिणी का जीवन युवाओं के लिए एक विशेष संदेश देता है। हमारे युवाओं को समझना चाहिए कि सफलता रातों रात नहीं मिलेगी, इसके लिए निरंतर अभ्यास करना होगा, सही मार्गदर्शन चाहिए होगा, समय का सदुपयोग करना होगा और धैर्य की जरूरत होगी।
1: बिल्कुल
0: साथियों, किसी दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ते देखकर स्वयं को कमजोर समझना उचित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, बस हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि कई बार हमारा लक्ष्य इतना बड़ा होता है कि उसे देखकर भी हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत समय, मेहनत, साधनों की जरूरत होगी।
0: बिल्कुल,
1: इसी सोच के कारण हम शुरुआत करने में ही देर करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटना उपयोगी होगा। यदि किसी युवा को सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो पहले वह पाठ्यक्रम समझ सकता है, फिर रोज एक विषय पढ़ सकता है और उसके बाद नियमित रूप से प्रश्नों का अभ्यास कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: यदि कोई महिला अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहती है तो वह पहले बाजार की जानकारी जुटा सकती है, फिर बजट तैयार कर सकती है और उसके बाद अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ सकती है।
0: जी हाँ,
1: हर छोटे कदम के बाद अपनी प्रगति को देखना चाहिए, इससे हमें पता चलता है कि हम अपने लक्ष्य के लिए वास्तव में काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: जब हम छोटे छोटे प्रयासों को पूरा करते हैं तो मन में विश्वास बढ़ता है और अगला कदम उठाना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए श्रोता साथियों, माँ ब्रह्मचारिणी से प्रेरणा लेते हुए यह समझे कि संकल्प केवल मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं है, संकल्प उस रास्ते पर नियमित रूप से चलने का नाम है, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों से कहना चाहेंगे कि साथियों, असफलता जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी कठिनाइयों या कह सकते हैं कि मुश्किल परिस्थितियों का सामना नहीं किया हो।
1: जी जी,
0: अंतर केवल इतना अंजलि जी कि कुछ लोग असफलता को अपनी कमजोरी मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इनसे सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मानते हैं और अपने जीवन में अपना कर आगे भी बढ़ते हैं। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी जी का जीवन जो है वो हमें ये सिखाता है कि महान उद्देश्य की प्राप्ति कभी कठिन मार्ग के लिए सरल नहीं होती, उस मार्ग पर धैर्य की परीक्षा होती है और हर व्यक्ति को अपने विश्वास की रक्षा करनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, हमारे जीवन में भी कठिन परिस्थितियां आएंगी, कभी संबंधों में हमारे तनाव होगा तो कभी पढ़ाई या कार्य में असफलता हमें मिलेगी। ऐसे में माँ ब्रह्मचारिणी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से जीने का संकल्प लेना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: असफलता या कठिन परिस्थितियों से घबराने के बजाय अंजलि जी, आगे बढ़कर उनका साहस पूर्वक हमें सामना करना चाहिए।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि कई बार हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए इतनी मेहनत करने लगते हैं कि हम ये देखना ही भूल जाते हैं कि हमारा रास्ता सही है या नहीं।
0: बिल्कुल,
1: हमें लगता है कि एक बार संकल्प ले लिया तो किसी भी परिस्थिति में उसी तरीके से आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन जीवन में समझदारी से निर्णय लेना भी उतना ही जरूरी है। यदि कोई तरीका काम नहीं कर रहा तो उसे बदलने में कोई बुराई नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: यदि किसी काम के लिए अधिक जानकारी की जरूरत है तो हमें जानकारी जुटानी चाहिए। यदि किसी परेशानी का समाधान अकेले नहीं मिल रहा तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई युवा नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहा है तो उससे केवल एक परीक्षा पर निर्भर रहने की बजाय अपनी योग्यता और पात्रता के अनुसार अन्य अवसरों की जानकारी भी लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यदि कोई किसान खेती में परेशानी का सामना कर रहा है तो वह कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर अपनी पद्धति में सुधार कर सकता है। संकल्प का अर्थ जीत करना नहीं, संकल्प का अर्थ है अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहना, उसे पूरा करने के लिए सही रास्ते तलाशना और परिस्थितियों के अनुसार योजना बदल सकना, लेकिन सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा हमेशा बनी रहनी चाहिए।
0: जी हाँ,
1: श्रोता साथियों, किसी भी धार्मिक स्वरूप से प्रेरणा लेना तभी सार्थक होता है जब हम उस प्रेरणा को अपने व्यवहार और कार्यों में शामिल करें। केवल पूजा करना ही नहीं बल्कि अपने जीवन में अच्छे गुणों को अपनाना भी महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल,
1: हम अपने दिन की शुरुआत एक छोटे से संकल्प से कर सकते हैं, जैसे आज अपना जरूरी काम समय पर पूरा करना, किसी से कटु शब्दों में बात नहीं करना, बच्चों की बात ध्यान से सुनना और अपने लक्ष्य के प्रति कुछ समय निकालना। दिन के अंत तक हम स्वयं से ये सवाल भी पूछ सकते हैं कशिश कि आज हमने क्या अच्छा किया, कहाँ सुधार की जरूरत है। इससे धीरे धीरे अपनी आदतों को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही हमें अपने आसपास के लोगों का भी उत्साह बढ़ाना चाहिए। यदि परिवार का कोई सदस्य पढ़ाई कर रहा है तो उसे प्रोत्साहित करें। यदि कोई महिला अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रही है तो उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसका साथ दें। यदि कोई बच्चा गलती कर रहा है तो उसे अपमानित करने के बजाय समझाने का प्रयास करें। जब परिवार और समुदाय में एक दूसरे के प्रयासों का सम्मान किया जाता है तो लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है।
0: बिल्कुल।
1: इस तरह माँ ब्रह्मचारिणी से मिलने वाली प्रेरणा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव का आधार बन सकती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में बातें हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को कार्यक्रम का एक और गीत यहाँ पर सुनवा दे।
1: बिल्कुल।

0: ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है। तो इसी बीच आप अपने फरमाइश की गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, अब हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडरपुर सिटी से। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, गीत के बोल ही गोरी है कलैया। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने और शब्बीर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़की जी और भी श्रोता साथी जुनाचार्य मलियाना सरधाना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर GVM जी जैन। इस गीत के अनुरोध करता है लाहौरा से डोमेंद्र नेताम, गणेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामलेश नेताम, माहिर नेताम। जमशेदपुर से जुड़ना चाह रहे हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, तमन्ना जी भाटिया। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, गीत के बोल ही गोरी है कलैया। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और शब्बीर कुमार जी ने। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है छोरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है क्रांति, गीत के बोल ही दुर्गा है मेरी माँ। इस गीत की फरमाइश करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, मानुषानु, बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बुलेंदखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी जी विश्वकर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है पलारे छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूनाराम देवगना और कृष्णा जी। जनकपुरी सहारनपुर से जुड़ना चाह रहे हैं जॉन डिकिस्ट्रो, रोजी डिकिस्ट्रो, पॉल डिकिस्ट्रो, विलिसी डिकिस्ट्रो। इस गीत के अनुरोध करता है धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराब जहां जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत की बोल ही दुर्गा है मेरी माँ। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पुष्यत महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है बेटा, गीत के बोल ही कोयल सी तेरी बोली। इस गीत की फरमाइश करता है रानी मानकर, राम मानकर, सुरभि और केदार जी। और भी श्रोता साथी जुन्नाचारी नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी गोस्वामी, टिंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा, तुलसी जी गोस्वामी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रसाद राजेंद्र जी वर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं रघुवीर नगर दिल्ली से खान हसीना बानो, एलिजा नायाब जी और लड्डू जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भगपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी, सुधीर न्यूतन और रामनाथ कश्यप जी। तो आइए श्रोता साथी सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही कोयल से तेरी बोली। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

अयशोदा साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भागपत यूपी से। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन, गीत की बोल है हाँ आंख है भरी भरी। इस गीत की फरमाइश कर इस गीत को आवाज दी कुमार सोनू जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है आसिफ अली खान, मुमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं नेपाल नगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकृत शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। पंजाब से जुड़ना चाह रहे हैं बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश जी मल्होत्रा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। हेमंत नामदेव, नंदनी नामदेव, नेहा नामदेव, निशा नामदेव, छन्नूलाल श्रीवास जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बचेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष जी विश्वकर्मा। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं आंख है भरी भरी। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए साथियों इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कोरबा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है मोहरा, गीत के बोल ही तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। इस गीत की फरमाइश करता है महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, गजेंद्र, राजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह और सहोदरी भाई मरकाम जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश यादव, अनिता जाधव, आरती पूजा, प्रशांत जाधव, सोनम जाधव, बेबी सिया जाधव जलाना शहर से जुड़ रहे हैं, सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जी जाधव, एकता जी जाधव और संगीता जी यादव। लोरमी छछड़ी छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। पत्रोड़ से जुड़ना चाह रहे हैं विजय अंबाटेकर, सुनीता अंबाटेकर, अक्षय अंबाटेकर, राधिका अंबाटेकर, ऋषिकेश अंबाटेकर। इस गीत की अनुरोध करता है महाराष्ट्र से किशोर वड़तकर, शुभम जी वड़तकर। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

आइए साथियों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भीड़ शहर महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है बेवफा। गीत के बोल ही इश्क छुपता नहीं छुपाने से। इस गीत की फरमाइश करता है निंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, जय श्री मेलित्री, रामनिवास अग्रवाल, धनजे बिट्टू, पीबी गुदलेश जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे छत्तीसगढ़ से, फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हिमांश कुमार चंदन, सोगा धमदरी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं राहुल नगर महाराष्ट्र से, सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चना गुड़ाने, हीरामन शिंदे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभाजी गुड़ाने। इस गीत के अनुरोध करता है सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांशी वर्मा। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। फिल्म का नाम है बेवफा। गीत के बोल ही इश्क छुपता नहीं छुपाने से। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आयुष और साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मुरादाबाद से। गीत के बोल हैं, कभी शाम टली तो मेरे दिल में आ जाना। इस गीत की फरमाइश करता है माया देवी ऋतिक आदित्य जी का साना। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास, बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सोमे सोमो और मानस जी राज। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहानजी अब्बासी, अर्जान अब्बासी, अबांजी अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है दादरी गेट भवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल जी मेहरा। भोपालगढ़ राजस्थान से जुड़ना चाह रहे हैं धर्मेंद्र चिपा, कपिल चिपा, पूजा परिहार जी, ईशान जी चिपा। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, कभी शाम टली तो मेरे दिल में आ जाना। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। स्वागत करते हो दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से हमारा आपके साथ बहुत अच्छा चलता है। सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। जैसा कि साथियों आज भी ये सिलसिला सुबह 11 बजे से बना हुआ था, जिसे आप सभी सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता मनीषा पटेल के साथ में। और अब आप इसे आगे सुनने वाले हैं मेरे साथ, यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में। तो दोस्तों फरमाइशों के सिलसिले को यूं ही आगे बढ़ाते हुए मैं जुड़ चुकी हूं आप सभी के साथ और बढ़ना चाहूंगी हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है बेवफा। गीत के बोल हैं, श्रोता साथियों, मेरा दिल जिस दिल पर फिदा है एक दिल रुबा है। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में बजेंद्र विश्वकर्मा, तारे देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा जी और भी हमारे साथी जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। नाम बताना चाहूंगी, हमारे दोस्तों जुड़ रहे हैं मस्तानपुरना जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा चेतन सुलोचना भगत। फरुखाबाद यूपी से जुड़ना चाह रहे हैं सूरज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलीना चौरसिया, सरिता चौरसिया, सुमित और सुजाता पंकज चौरसिया जी। डाबकी रोड अकोला से जुड़ना चाह रहे हैं सुशीला देवी मंदुरकर, सिद्धानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर। यवतमाल से निशा रानी नागरिकल, निनेश नागरिकल, अदावर पिताजी। किशोरनगर अमरावती से हीरामन शेंडे, शीला देवी शेंडे, सिद्धार्थ गुणाने, अर्चना ताई गुणाने जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं हमारे साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है एक दिल रुबा है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, बेवफा फिल्म का, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है एक दिल रुबा है, इसी गीत के बाद मैं फिर से बढ़ना चाहूँगी हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है किशोर नगर अमरावती से। फिल्म का नाम है हाँ मैंने भी प्यार किया। गीत के बोल हैं, हम प्यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में अमरावती से, हीरामन शिंदे, शिल्ला देवी शिंदे, सिद्धार्थ गुणा ने, अर्चना ताई गुणा ने जी। छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी जी। और भी अनुरोध करता जुड़ रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से, दिलीप रामेकर, हर्षा रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिरा रामेकर और रामेकर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। और भी दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन साहू, हेमंत नामदेव वाधवानी जी। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक जी। बोरखेरा पित्रा मल से हैं विनोद मुड़न, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चेतन नाटा, दीक्षा कुश मुड़त, दिलीप सिंह पंवार जी। तो आइए श्रोता साथियों, मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, हम प्यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की। और अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, आपको बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों अवतार। गीत के बोल हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में, जफराबाद से हैं सुधाकर राजे जादव, प्रशांत राजे जादव, जगुताई राजे जादव, संचित वयाल, प्रथमेश देव, श्रमत कर्मला, सानविक और प्रणाली देशमुख जी। और भी हमारे श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, नादुरा से संतोष वशाने, उषा वशाने, सागर कटक, ऋषिकेश अनिकेत, डिंडोरी नाशिक से विशाल गवली, सोनाली गवली, समर्पण गवली, भक्ति गवली जी, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिण दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, सनिका दले, पूना वाले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा, अविका सायशा सोनवने जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में, नरवेल महाराष्ट्र से है पीएस नवाडकर, निर्मल नवाडकर, विशाल नवाकर। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है मर्द, गीत के बोल है हो मां शेरों वाली। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाडकर, निर्मल नवाडकर, विशाल नवाकर और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इस गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूंगी दोस्तों आपको, ये तला महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं शंकर लाल जयसवाल, गणेश लाल जयसवाल, शुभम प्रसाद जयसवाल, अर्णय जयसवाल, दुर्गेश्वरी जयसवाल, राखी जयसवाल, तृप्ति जयसवाल और भी साथी जुड़ रहे हैं करेली बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, नासिन अंसारी, शमा अंसारी, माहिनूर अंसारी जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं माँ शेरों वाली। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है। मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, ये फरमाइश आई है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई से। फिल्म का नाम है राज। किसके बोल हैं श्रोता साथियों, जिंदगी बन गए हो तुम। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं।

के साथ में आपको नाम बताना चाहूंगी। 8 जुलाई से बेगम अनुश्री प्रदीप, राशि प्रमिला प्रदीप, रायगढ़ से जानवी डोमिन, पिंकी दीपा डोमिन, लोहारा से फर्जी हरिशंकर बेलदार, प्रभा फर्जू रानी जी, रायगढ़ से जुड़ रहे उमारा जगदीश राज, और भी हमारे दोस्त हैं दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष सोहिनी, मोहरतिक बलवीर सिंह जी, और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं। आगरा से सरिता चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सुमित चौरसिया, अबीर और वीर अबीर जी, कानपुर से सुजाता चौरसिया, पंकज और दिया पीहू जी, गंजुडवारा से जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाथ, नाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल है जिंदगी बन गए हो तुम, तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था जिंदगी बन गए हो तुम, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है। मैं आपको बताना चाहूंगी, मस्तानपुरना जंक्शन से ये फरमाइश का गीत आया है। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत। गीत के बोल हैं, अपनी कहानी कैसे कहेंगे। फरमाइशकर्ता और भी हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी, बंगलोर से जुड़ना चाह रहे हैं बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शो, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुश्री गुप्ता, नेहा जी और अनविक्षा तनुश्री गुप्ता जी। इसी बीच झूमरे तलैया से भी जुड़ रहे हैं अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी, गुड्डू कुमार गुप्ता, मुन्नी देवी जी, जयप्रकाश साव, रिया जिया, टुसी, आयुषी, अनिरुद्ध जी, वसंत हीरा मोती, पन्ना लाल जी और भी दोस्त जुड़ रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गंगनीदा, पूनम गंगनीदा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी और भी दोस्त से जुड़ना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूंगी, आगरा से सुरेता चौरसिया, सुमित चौरसिया, सरिता जी, कानपुर से सुजाता और पंकज जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, अपनी कहानी कैसे कहेंगे। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है मलंग, गीत के बोल हैं हमराह। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं बाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणिवर्मा, पारस मणिवर्मा, पुष्पेंद्र मणिवर्मा, नुखेलाल वर्मा जी। और भी हमारे दोस्त से जुड़ना चाह रहे हैं जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बोए हिमाक्ष जी। श्रीरामपुर से जुड़ना चाह रहे हैं अशोक कुमार, अविका जीविका, सानू कुमार, रचना कुमार। पुलावाले से हैं अजय सोनवानी, करिश्मा सोनवानी, अविका सोनवानी, शायसा सोनवानी जी। सहारनपुर से जुड़ना चाह रहे हैं सैयद मसूर, साना अक्सान, आजमा आफिया, इब्राहिम सद्दाम जी। आकोट से हैं विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन झरिया, संजीव डाबेराव जी। और भी दोस्त बक्सर बिहार से सफरुद्दीन अंसारी, खातून अंसारी, सुमित रामेश शाहू। बिहार से डब्ल्यू अंसारी, सोनम दीपा, दानिश अंसारी जी। बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य। बक्सर से और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे एजराज अंसारी, खातून इकबाल मस्तान जी। कुंभार गली कोल गांव से हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी प्रतीक्षा, अभिषेक चंदन, सार्थक प्रथमेश चंदन, संतोष पांडुरंग कुम्हार जी। जाखोद राजस्थान से है शमुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। मारवाड़ बिलारा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान। महाराष्ट्र से है श्रीरामपुर से नासिर शेख, नाजर नाचर, शाजिद शाहिद। गोविंदपुर अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखाइल, जैनब मुजावर जी। एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित कांगड़ा। गाजीबाद से जुड़ना चाह रहे शिषपाल अकेला, तेजपाल प्रजापति जी। सिरसा से हैं हांडीखेड़ा से राधेश्याम शर्मा, इंदर शर्मा, सार्थक, सचिन शर्मा, रोहित शर्मा जी। कलानोर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन, मयंक शर्मा। शिवाजी चौक कटनी से जुड़ना चाह रहे हैं अनिल ताम्रकर, अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकर, रंजन रजक, विपिन गुप्ता, प्रकाश सोनी, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना, मोना यानी हनी यश और सोम्या जी। खंडवा से जुड़ना चाह रहे हैं अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जिया उलक रहमान डावर, कादर डावर, सोहन जोशी जी। पश्चिम महाराष्ट्र से जुड़ रहे मास्टर विठल सुरेश, सुषमा सुरुदे, परेश रोसे, मालेश रोसे जी। और भी साथी जुड़ रहे हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। सुजाता चौरसिया, सूरज चौरसिया, सरोज सुरेश जी, शिवानी बाबू, शिवाजी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं हम राह। आपको बताना चाहूंगी कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में कुछ नए फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

साथियों, ये तो थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज के इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

शुभ संध्या श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज, और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारी के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा मनोरंजन हो जाए, और इन सभी रंगों को लेकर आपके साथ है आपका अपना वागड़ रेडियो। तो साथियों, आइए जानते हैं आज की शाम के कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति और आस्था से भरे सुरों को लेकर, जो मन को शांति देते हैं और आत्मा को सुकून। दिन भर की थकान को भुलाकर साथियों, ईश्वर के स्मरण के साथ इस खूबसूरत शाम की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शाम 5:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंच है युवाओं के विचारों का, उनके सपनों का और उनके जज्बे का। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए इसे शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत, मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे, मीठी यादें। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों, शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और उनके साथ होंगे जागृति भट्ट। इसके आगे दोस्तों, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। साथियों, ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है, जो हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। तो भूलिएगा नहीं, शाम 7 बजे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। इसी के बाद दोस्तों, हम फिर से रुक करेंगे 7:30 पर और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। तो जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम जान ही रहे हैं। इसी के बाद दोस्तों, शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इसी के बाद दोस्तों, अगला कार्यक्रम होगा मनोरंजक गीत कार्यक्रम। ये है साथियों पुराने और

नए गीतों का ऐसा खूबसूरत संगम जो आपके दिल को छू जाएगा और शाम को और भी यादगार बना देगा। और इसके बाद रात 9 बजे प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम शामे गजल, जहां गूंजेंगे दिल को छू लेने वाले अल्फाज, मधुर गजलें और सुकून भरे नगमे, जो इस सुहानी रात को और भी खास बना देंगे। तो साथियों, शाम की ये घड़ियां सिर्फ समय नहीं होती बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर होती है, जहां भक्ति का सुकून भी है, युवाओं के सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागड़ रेडियो। तो आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वागड़ रेडियो 90.8 FM।

पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते, उनके भविष्य की चिंता करते रहते। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये, किंतु तीन प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है, अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन, दूसरे को दुख होगा, ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? स्वयं विचार कीजिए। जब भी किसी की आशा और इच्छा भंग होती है तो उसका हृदय क्रोध से भर जाता है। जिस व्यक्ति को वो अपना अपराधी समझता है उसे दंड देने का प्रयत्न करता है। पर क्या हमारी इच्छा या आशा का भंग होना क्या सदा ही किसी का अपराध होता है? इच्छाओं के अपूर्ण रहने के तो कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो संजोग के कारण अधूरी रह जाती हैं और कुछ नियति के कारण। और कभी कभी इच्छाओं का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वो पूर्ण नहीं हो पाती। बिना परिस्थिति पर विचार किए किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं, प्रतिशोध है। न्याय का आधार तो दया है, करुणा है, और प्रतिशोध का आधार क्रोध, अहंकार। अर्थात
हृदय में करुणा धारण किए बिना किसी के अपराध के विषय में विचार करना, किसी को दंड देना क्या अपने आप में ही अन्याय नहीं? स्वयं विचार कीजिए।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबो ने पूछे है जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जैवरे अधिकार हंग्र अपनावी जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बोनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है
3: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा
4: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर
0: हिंडो स्कूल जा आपड़े आपड़ा भी अपना पूरा करो
3: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है
4: होवे जैवरे सब सोरा भणेगा तारे स्तुतिश अगाड़ी बढ़ेगा
3: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
1: भाई ने बोलो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह या आपड़े नी कितनी शांति मिले है जीनी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा
4: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो
1: होवे आज नाना ना कदम है ई अबावरा काल ने बदलाव ने शुरुआत है
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले हमारे सभी युवा साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कि अगर कम समय में बेहतर काम करना चाहते हैं तो हमें कुछ रणनीतियों को बनाना होगा।
0: बिल्कुल,
1: अक्सर हम कहते हैं कशिश की समय नहीं मिलता, काम बहुत ज्यादा है, दिन खत्म हो जाता है लेकिन काम पूरा ही नहीं हो पाता। लेकिन क्या श्रोता साथी, समस्या वास्तव में समय की कमी है? समस्या होती है समय का सही इस्तेमाल न कर पाने पर। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कुछ व्यवहारिक रणनीतियों के बारे में जिन्हें हम अपनाकर अपने काम को ज्यादा व्यवस्थित, प्रभावी और बेहतर बना सकते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, तो इसी विषय को लेकर कार्यक्रम के माध्यम से आज युवा साथियों से ढेर सारी बातें हम करेंगे, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं पहले एक प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ,
0: तो श्रोता साथियों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि अगर हम अपने काम को कम समय में बेहतर करना चाहते हैं तो हमें कुछ रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। जैसा कि आपने गीत से पहले बताया था जागृति जी कि अक्सर हमने लोगों को ये कहते सुना है कि उनके पास समय ही नहीं किसी काम को करने का और दिन कैसे निकल जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता।
1: बिल्कुल।
0: तो कार्यक्रम के माध्यम से आज युवा साथियों हम कुछ ऐसी रणनीति आपके लिए लेकर आए हैं जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप बेहतर तरीके से अपने काम को पूरा कर सकते हैं।
1: जी हाँ कशिश,
0: जैसे कि अगर पहली रणनीति की बात करें तो काम की प्राथमिकता तय करना बहुत जरूरी है जागृति जी।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हमारे पास दिन भर में करने के लिए कई काम होते हैं लेकिन हर काम समान रूप से जरूरी नहीं होता। इसलिए श्रोता साथियों दिन की शुरुआत में खुद से पूछिए कि आज ऐसा कौन सा काम है जिसे पूरा करना सबसे जरूरी है।
1: जी हाँ,
0: जरूरी कामों की एक छोटी सी आप सूची बनाइए और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर क्रम में दीजिए श्रोता साथियों। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर किसी विद्यार्थी को परीक्षा की तैयारी करनी है और प्रोजेक्ट भी तैयार करना है, मोबाइल पर दोस्तों के संदेशों का जवाब भी देना है तो पहले पढ़ाई, प्रोजेक्ट, फिर जरूरी काम पूरे करने होंगे और यही श्रोता साथियों बेहतर रहेगा। याद रखिए व्यस्त रहना और उत्पादक होना दोनों अलग अलग बातें हैं। पूरे दिन व्यस्त रहने के बजाय सही काम को सही समय पर करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है साथियों।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि आज हमारा ध्यान सबसे ज्यादा भटकता है। काम करते करते मोबाइल देखना, नोटिफिकेशन चेक करना, सोशल मीडिया खोलना और फिर दोबारा काम पर लौटना, इससे समय भी जाता है और ध्यान भी हमारा टूट जाता है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए श्रोता साथियों कोशिश करें कि जब कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए केवल उसी पर ध्यान दें। अपने आप से कहे कि अभी सिर्फ यही काम करना है। उदाहरण के लिए यदि आपको किसी कार्यक्रम की स्क्रिप्ट लिखनी है तो उस दौरान बार बार मोबाइल देखने के बजाय पहले स्क्रिप्ट पूरी करने पर ध्यान दें।
0: जी,
1: एकाग्रता बढ़ने से काम की गति के साथ साथ उसकी गुणवत्ता भी बेहतर होती है।
0: बिल्कुल, इसी के साथ दोस्तों कई बार बड़ा काम देखकर हमें लगता है कि यह बहुत मुश्किल है और इसे शुरू करने का हमारा मन ही नहीं करता।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में जागृति जी बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में हम बांट सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए साथियों कि आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करना है तो एक साथ पूरा प्रोजेक्ट करने के बजाय आप उसे अलग अलग चरणों में बांट सकते हैं। पहले जानकारी जुटाना, फिर रूपरेखा बनाना और उसके बाद लिखना और अंत में जांचना। दोस्तों छोटे लक्ष्य आसानी से पूरे होते हैं और हर छोटी सफलता आपको आगे बढ़ने का उत्साह देती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए बड़ा काम देखकर घबराइए मत, उसे छोटे छोटे कदमों में बदल दीजिए।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज के समय में हमारा सबसे बड़ा समय चोर कई बार हमारा अपना मोबाइल बन जाता है। हम सोचते हैं कि केवल 2 मिनट सोशल मीडिया देखेंगे लेकिन हमें पता ही नहीं चलता और वो काफी समय हम सोशल मीडिया पर बिता देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए श्रोता साथियों जरूरी काम करते समय अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कर दें, मोबाइल को थोड़ी दूरी पर रख सकते हैं और सोशल मीडिया के लिए अलग समय निर्धारित कर सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: इसका मतलब ये नहीं है कि मनोरंजन या मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, बल्कि जरूरत है संतुलन बनाने की। इसलिए याद रखिए जिस चीज को हम नियंत्रित नहीं करेंगे वो धीरे धीरे हमारे समय को नियंत्रित करने लगेगी।
0: बिल्कुल जागृति जी, ऐसे में साथियों दिन के अंत में अपने काम की समीक्षा आप तैयार करें। जैसे कि दिन खत्म होने पर केवल ये मत सोचिए कि आज कितना काम नहीं हो पाया।
1: बिल्कुल,
0: बल्कि ये भी देखिए कि आज आपने हासिल क्या किया है। खुद से 3 सवाल आप पूछे, जैसे कि आज मैंने कौन सा महत्वपूर्ण काम पूरा किया, मेरा समय कहाँ सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ और कल मैं अपने काम को और कैसे बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
1: जी हाँ
0: जागृति जी, ये छोटी सी समीक्षा हमारी अपनी गलतियों को समझने और अगले दिन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करेगी।
1: बिल्कुल,
0: कभी कभी साथियों बेहतर काम करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं बल्कि बेहतर तरीके अपनाने की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, हम जान पा रहे हैं कि किस तरह से हम अगर कम समय है तो बेहतर काम किस तरह से कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और बेहतर काम करने के लिए हमें कौन कौन सी रणनीतियों को अपनाना होगा। तो ये रणनीतियों के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, ये बातें निरंतर आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में और हम बात कर रहे थे कि अगर कम समय है तो हमें बेहतर काम किस तरह से करना है। गीत से पहले हमने काम की प्राथमिकता हमें तय करनी इसको लेकर बातचीत की थी। साथ ही हमने जाना था कि एक समय में हमें एक ही काम करना है, काम को छोटे हिस्सों में बांट देना है, ध्यान भटकाने वाली चीजों से हमें दूरी बनाए रखनी है, साथ में दिन के अंत में काम करने की समीक्षा करनी है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें तो हमने गीत से पहले कर ली थी। श्रोता साथियों, अब आपको कहना चाहेंगे कि कम समय में बेहतर काम करने का मतलब ये नहीं है कि हम लगातार काम करते रहें और आराम के लिए समय ही ना निकालें। आराम, नींद, भोजन और मानसिक ताजगी भी हमारी कार्य क्षमता का हिस्सा है। अपने दिन को इस तरह व्यवस्थित करें कि काम के साथ साथ सीखने, परिवार, दोस्त, रुचियां और खुद के लिए भी समय रहे, क्योंकि सफलता केवल ज्यादा काम करने से नहीं मिलती बल्कि सही दिशा में सही तरीके से काम करने से मिलती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से दोस्तों ऐसी कुछ 5 रणनीतियां हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि पहली होती है प्राथमिकता तय करने की, दूसरा एक समय में एक काम करने की, तीसरी बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटने की, और चौथी ध्यान भटकाने वाली चीजों को नियंत्रित करने की, और पांचवी श्रोता साथियों दिन के अंत में अपने काम की समीक्षा करने की।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में युवा साथियों याद रखिए कि समय कम या ज्यादा नहीं होता, फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज से आप अपने काम करने का तरीका थोड़ा बदल लीजिए, छोटे बदलाव अपनाइए, कुछ ही समय में आपको अपने काम में श्रोता साथियों फर्क दिखाई देने लगेगा।
0: जी हाँ, बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि मान लीजिए श्रोता साथियों कि दो युवाओं को एक ही काम पूरा करना है। कशिश, पहला युवा बिना योजना के काम शुरू करता है, बीच बीच में मोबाइल दिखता है, दूसरे काम को शुरू करता है, फिर पहले काम पर लौटता है, फिर पहले काम पर लौटता है और कहीं पर अपना काम दोहराता है।
1: बिल्कुल,
0: इसी तरह जो दूसरा युवा है वो पहले कुछ मिनट लगाकर योजना बनाता है, जरूरी काम को प्राथमिकता देता है, मोबाइल को एक तरफ रखता है, काम को छोटे हिस्सों में बांटता है और अंत में अपने काम की समीक्षा करता है। संभव है कि दोनों ने समान मेहनत की है लेकिन दूसरे युवा का समय ज्यादा व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल हुआ।
1: बिल्कुल,
0: इससे हमें यही शिक्षा मिलती है श्रोता साथियों कि सिर्फ ज्यादा मेहनत करना ही सफलता की कुंजी नहीं है, बल्कि सही दिशा में व्यवस्थित मेहनत करना भी उतना ही जरूरी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, श्रोता साथियों याद रखिए कि समय को बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन समय के इस्तेमाल को बेहतर जरूर बनाया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो दुनिया के हर व्यक्ति के पास हैं। फर्क इस बात से पैदा होता है जागृति जी कि उन घंटों में हम अपनी ऊर्जा, ध्यान और मेहनत को किस दिशा में लगाते हैं।
0: जी हाँ,
1: इसलिए दोस्तों आज से एक छोटा सा संकल्प आप लीजिए, काम ज्यादा करने का नहीं, काम बेहतर तरीके से करने का है, क्योंकि जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, प्राथमिकता तय होती है और काम करने का तरीका व्यवस्थित हो जाता है तो कम समय में भी बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।
0: जी हाँ कशिश, आज की इस बातों का सार यही है कि समय कम नहीं है, जरूरत है उसे सही दिशा देने की। जब हम अपनी प्राथमिकता तय करते हैं, एकाग्र होकर काम करते हैं, बड़े काम को छोटे कदमों में बांटते हैं, ध्यान भटकाने वाली चीजों को नियंत्रित करते हैं और हर दिन अपने काम की समीक्षा करते हैं तो हमारी कार्य क्षमता धीरे धीरे बेहतर होने लगती है।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए श्रोता साथियों कि सफलता इस बात से तय नहीं होती कि हमारे पास कितना समय है, बल्कि इस बात से तय होती है कि उपलब्ध समय का हमने कितना सार्थक उपयोग किया है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए आज से एक छोटा सा आप संकल्प लीजिए, काम को टालेंगे नहीं, सही काम को प्राथमिकता देंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकाग्रता से काम करेंगे, बड़े लक्ष्य से डरेंगे नहीं, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ेंगे।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हर दिन हमारे हाथ में एक नया अवसर लेकर आता है, बीता हुआ समय छोटा साथियों हम सभी जानते हैं कि वो वापस नहीं आता, लेकिन आने वाले समय को बेहतर जरूर बनाया जा सकता है, ये हमारे हाथ में ही होता है।
1: जी
0: हाँ, इसलिए अपने समय की कीमत समझिए, अपनी मेहनत को सही दिशा दीजिए और हर दिन खुद का थोड़ा बेहतर रूप बनने की कोशिश कीजिए।
1: बिल्कुल,
0: आपको कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि समय को रोकना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन समय को सही दिशा देना हमारे हाथ में है। छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बेहतर समय प्रबंधन ही बेहतर जीवन की शुरुआत है।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहा जा सकता है कि हमारा आज का एक व्यवस्थित घंटा साथियों कल की कई उलझनों को आसान बना सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए समय को सिर्फ गुजरने मत दीजिए, उसे अपने सपनों की दिशा में लगाइए। याद रखिए दोस्तों, समय कम नहीं होता, हमारी दिशा कहीं ना कहीं कई बार बिखर जाती है।
0: जी हाँ,
1: जब लक्ष्य स्पष्ट हो, प्राथमिकताएं तय हो और मेहनत सही जगह लगाई जाए जागृति जी, तो कुछ घंटे भी बहुत कुछ बदल सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, अब देख पा रहे हैं कि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से जाने का।
1: जी हाँ,
0: जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल जागृति जी,

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बातें रही युवाओं की आवाज में वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज की कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए,
0: हमारा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भर

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, क्या आपने बच्चों को मौसम बदलते ही सर्दी जुखाम या बुखार होते देखा है? क्या बरसात के दिनों में बच्चों को दस्त उल्टी या मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है?
0: जी जी।
1: क्या आप जानना चाहते हैं श्रोता साथियों कि कुछ आसान सावधानियों से बच्चों को मौसमी बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है?
0: बिल्कुल।
1: तो आज का हमारा विशेष कार्यक्रम बच्चों को मौसमी बीमारियों से कैसे बचाएं उसको लेकर ही है।
0: जी हाँ।
1: बच्चे हमारे परिवार की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं कशिश। उनका स्वस्थ रहना केवल माता पिता के लिए ही नहीं बल्कि समाज की जिम्मेदारी है। तो आइए जानते हैं कि बदलते मौसम में बच्चों की देखभाल कैसे करें और उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित कैसे रखें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी होंगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसा कि हमारे साथी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत के साथ हम उन्हें कार्यक्रम के माध्यम से पहले मनोरंजन करवाते हैं, तो क्यों ना आज भी शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ हम करें।
1: बिल्कुल। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को मौसमी बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि जी आपने गीत से पहले हमारे श्रोता साथियों को ये बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि जब भी मौसम में थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन होता है तो सबसे पहले बीमार हमारे बच्चे ही पड़ते हैं, क्योंकि श्रोता साथियों बचपन जो है वो जीवन का सबसे कोमल और संवेदनशील समय होता है।
1: जी जी,
0: इस उम्र में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं हो पाती है, इसलिए मौसम बदलते ही वे जल्दी बीमार पड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि कभी सर्दी खांसी हो जाती है तो कभी बुखार आ जाता है बच्चों को, कभी दस्त तो कभी त्वचा संबंधित समस्याएं बच्चों को परेशान करने लगती है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, विशेषकर हम बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में बच्चों को संक्रमित होते हुए देखते हैं, लेकिन इन सभी बातों में अच्छी बात ये है दोस्तों कि थोड़ी सी सावधानी, संतुलित आहार, स्वच्छता और सही देखभाल के माध्यम से हम अपने बच्चों को कई मौसमी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो आइए श्रोता साथियों जानते हैं कि बच्चों को मौसमी बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है।
1: जी हाँ, श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे कि मौसमी बीमारियां वे बीमारियां हैं जो मौसम में परिवर्तन होने पर अधिक फैलती हैं। बच्चों में सामान्यतः हम देखते हैं कशिश की सर्दी, जुखाम, वायरल बुखार, खांसी, दस्त, उल्टी, डेंगू मलेरिया, त्वचा संक्रमण, आंखों का संक्रमण, एलर्जी और सांस संबंधित समस्याएं फैलती हैं। इन बीमारियों का मुख्य कारण संक्रमण, गंदगी, दूषित पानी, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता और मौसम के अनुसार उचित देखभाल का अभाव होता है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कशिश कार्यक्रम के माध्यम से कि बच्चों को बीमारियों से बचाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है स्वच्छता।
0: जी जी,
1: जी हाँ श्रोता साथियों, बच्चों को भोजन से पहले और सोच के बाद साबुन से हाथ धोने की आदत डालें, नाखून नियमित रूप से काटें, घर और आसपास का वातावरण साफ रखें, पीने का जो पानी है वो हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रखें, बच्चों के खिलौनों की समय समय पर सफाई करें, खुले में रखे भोजन से बच्चों को दूर रखें, क्योंकि स्वच्छता न केवल बीमारी को रोकती है बल्कि बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। अब यही साथियों को अगर बताएं कि पौष्टिक भोजन बच्चों के लिए किस प्रकार से सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हो सकता है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर होती है।
1: जी जी,
0: ऐसे में साथियों बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाने में संतुलित भोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के भोजन में हम हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दालें, अंकुरित अनाज, दूध और दुग्ध से बने उत्पाद, सूखे मेवे, मोटे अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार और रागी ये शामिल कर सकते हैं।
1: जी जी,
0: साथी श्रोता साथियों, जंक फूड, अधिक तली भुनी चीजें और बाजार के खुले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे हमारे बच्चों को हमें दूर रखना है।
1: बिल्कुल,
0: पौष्टिक भोजन जो है वो बच्चों को अंदर से मजबूत बनाता है अंजलि जी, साथ ही संक्रमण से लड़ने की क्षमता भी बच्चों में बढ़ाता है।
1: जी हाँ, यही कशिश अब बात आती है कि अक्सर माता पिता मौसम के बदलाव को नजरअंदाज कर देते हैं जिससे बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। जैसे कि अगर गर्मियों का मौसम है तो हमें बच्चों को हल्के सूती कपड़े पहनाने चाहिए, पर्याप्त पानी पिलाना चाहिए, तेज धूप में बाहर जाने से बचाना चाहिए, और अगर बरसात का मौसम हो तो बच्चों के जो भीगे कपड़े होते हैं उन्हें हमें तुरंत बदलना है, साफ और सूखे कपड़े पहनाने हैं, मच्छरों से सुरक्षा करनी है, और सर्दियों का मौसम होता है तो उसमें हमें बच्चों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनाने हैं, सिर, कान और पैरों को ढककर रखना है और सुबह शाम की ठंडी हवा से बचाने की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि अंजलि जी हमारी बातें हमारे श्रोता साथियों से बहुत अच्छी चल रही है और हम जान रहे हैं कि किस प्रकार से मौसमी बीमारियों से हम अपने बच्चों को बचाएं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें आगे भी ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन अभी क्यों ना यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.5।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि किस तरीके से हमें बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाने की जरूरत है, मौसमी बीमारियों से क्या होता है, विशेष सावधानी हमें क्या रखनी है, पौष्टिक भोजन किस तरीके से कशिश सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन सकता है, साथ ही हमने जाना कि मौसम के अनुसार कपड़ों का चयन और बच्चों का ध्यान रखने की हमें जरूरत है।
1: बिल्कुल।
0: यही बात करें टीकाकरण के महत्व की, तो श्रोता साथियों, टीकाकरण बच्चों को कई गंभीर बीमारियों से बचाता है और माता पिता को चाहिए कि बच्चों का समय पर टीकाकरण करवाएं, टीकाकरण कार्ड सुरक्षित रखें, किसी भी टीके की खुराक न छूटने दें। टीके बच्चों के स्वास्थ्य की मजबूत नींव तैयार करते हैं।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ बरसात के मौसम में डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ जाता है, इसके लिए घर के आसपास पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएं, कूलर और पानी की टंकियों की नियमित सफाई करें। इसी के साथ एक छोटी सी लापरवाही श्रोता साथियों बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए बच्चों के लिए पर्याप्त नींद बेहतर आवश्यक है।
1: जी हाँ,
0: बच्चों को उम्र के अनुसार पूरी नींद मिलनी चाहिए। बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर रखकर खेल कूद के लिए प्रेरित करना है। योग और हल्की शारीरिक गतिविधियाँ भी जरूरी है, क्योंकि कशिश, अच्छी नींद और नियमित गतिविधियाँ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो ये तो आपने बात करी कि हमारे बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए हम क्या सावधानी बरत सकते हैं और कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है।
0: बिल्कुल।
1: यही अगर साथियों बात करें कि बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, जैसे कि यदि आपके बच्चे में कुछ लक्षण दिखाई दे तो श्रोता साथियों उन पर आप तुरंत ध्यान दें। जैसे कि बच्चे को लगातार बुखार बना रहता है, खांसी या सांस लेने में परेशानी है, बार बार दस्त या उल्टी बनी रहती है, अत्यधिक कमजोरी है बच्चों में और भूख न लगना भी एक कह सकते हैं अंजलि जी लक्षण हो सकता है मौसमी बीमारियों की शुरुआत का।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में साथियों समय पर चिकित्सीय सलाह लेने से बीमारी गंभीर होने से बच सकती है। अगर अंजलि जी हम ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में विशेष सावधानियों को लेकर बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वागड़ क्षेत्र सहित ग्रामीण इलाकों में बच्चों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पूरे समुदाय की होती है।
0: जी हाँ।
1: ऐसे में आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों से नियमित संपर्क बनाकर रखें साथियों, बच्चों का वजन और स्वास्थ्य जांच करवाते रहे समय समय पर, साफ पानी और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित आप करें और गांव में स्वच्छता अभियान और जन जागरूकता गतिविधियों में भी आप बच्चों के साथ भाग ले सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि अंजलि जी, जब पूरा समुदाय जागरूक होता है तब बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनता है।
0: जी हाँ। यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि बच्चे केवल हमारे परिवार की ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं।
1: जी हाँ।
0: उनका स्वस्थ रहना हमारे आने वाले कल की मजबूती का आधार है। मौसम बदलना प्रकृति का नियम है, लेकिन सही जानकारी और समय पर सावधानी अपनाकर हम बच्चों को कई बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: स्वच्छता, पौष्टिक भोजन, समय पर टीकाकरण, पर्याप्त नींद और प्यार भरी देखभाल बच्चों के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा की ढाल है। हम सभी को मिलकर यह संकल्प लेना होगा कि अपने घर, आंगन और गांव के हर बच्चे के स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि स्वस्थ बच्चा ही स्वस्थ समाज और उज्जवल भविष्य की पहचान है। क्योंकि श्रोता साथियों, किसी भी समाज की असली पहचान

0: व्यक्ति सजग रहे तो मौसमी बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, साथ ही हमारे श्रोता साथियों से हम ये भी कहना चाहेंगे कि दोस्तों आज के समय में जानकारी की कमी नहीं है, आवश्यकता है तो सिर्फ सही जानकारी को अपनाने की और उसे व्यवहार में लाने की।
0: बिल्कुल
1: अंजलि जी, कई बार छोटी छोटी सावधानियाँ जैसे कि साफ पानी पीना, साफ पानी का उपयोग करना, हाथ धोने की आदत, समय पर डॉक्टर की सलाह और पौष्टिक भोजन के साथ साथ स्वच्छ वातावरण बच्चों को कई परेशानियों से बचा सकता है।
0: जी हाँ
1: साथियों, बीमारी का इलाज जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बीमारी को होने से रोका जाए। यही समझ अंजलि जी एक स्वस्थ और जागरूक समाज की पहचान मानी जाती है। ऐसे में दोस्तों हमें अपने बच्चों को केवल अच्छा जीवन ही नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन देने का संकल्प भी लेना चाहिए।
0: जी हाँ
1: उन्हें ऐसा वातावरण दे जहाँ वे निडर होकर आगे बढ़ सके, अपनी प्रतिभा को पहचान सके और अपने सपनों को साकार कर सके। श्रोता साथियों, आज बच्चों के स्वास्थ्य पर किया गया निवेश आने वाले कल के मजबूत समृद्ध समाज की नींव बनता है।
0: बिल्कुल कशिश, तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ये जान पाए कि मौसमी बीमारियों से हमें हमारे बच्चों को कैसे बचाना है और किन किन विशेष बातों का माता पिता को ध्यान रखने की जरूरत है।
1: बिल्कुल
0: आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक रुपया से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल अंजलि जी।
2: चकलो रम गंडो वंडो लकरक टम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई विडी पाई चिकी चक चो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकरक हुक बुकुरे टुक बुकुरे चकलक बिको चिको सिली सिली सिली गो बगड़ दुम जगड़ दुम चिकी चक चो।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही कि हम अपने बच्चों को मौसमी बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं और इसमें हमें क्या सावधानी बरतनी है, ये भी हम कार्यक्रम के माध्यम से जान पाए हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये सभी बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
1: नमस्कार।

सेहत नो राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करूँ। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आराज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुंद, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है? नाना अंजलि बुंद, हूँ था का? अरे जागृति बुंद, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा। ओ अंजलि बुंद, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा। होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

बहनो, घर तकी निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्य जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: उसमें कई तरह की सावधानियां बरतनी होती है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे बीज उत्पादन के लिए ऐसे खेत का चयन करें या ऐसी जगह का चयन करें जहां जल भराव की समस्या न होती हो, जहां की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ हो, खरपतवार का नियंत्रण विशेष रूप से वहां पे उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। खेत में जो बीज हम डाल रहे हैं जिससे हम अगला बीज तैयार करना चाहते हैं,
1: बिल्कुल,
0: उसकी गुणवत्ता, शुद्धता और उसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खराब बीज से अच्छी फसल या अच्छा बीज हम हासिल नहीं कर सकते।
1: जी हाँ।
0: तो फसल की बढ़वार के दौरान नियमित रूप से ये जाकर देखना जरूरी होता है कि खेत में या पौधों पे कोई कीट या बीमारी तो नहीं लग रही है, है ना, पौधे असमान तो नहीं है, कोई बहुत बड़ा हो रहा है, कोई बहुत छोटा हो रहा है, तो ये निरीक्षण लगातार करते रहना पड़ता है जिससे बीज की गुणवत्ता हम सुनिश्चित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही बताया। जैसा कि आपने हमें बताया कि खेत से शुरू होता है बीज उत्पादन, यही श्रेष्ठ पौधे का चयन हमारे किसान भाई बहन कैसे कर सकते हैं?
0: तो किसान भाइयों, बीज चयन के लिए जो श्रेष्ठ पौधों का चयन होता है, तो बीज चयन के लिए केवल हमें दानों का चयन नहीं करना है, बल्कि भविष्य की फसल का हम चयन कर रहे हैं, इस चीज को हमें याद रखना है। तो किसान भाई जिस पौधे से भी बीज रखते हैं वो वास्तव में अगले साल की फसल की गुणवत्ता का निर्धारण करती है। यदि बीज अच्छे होंगे तो फसल अच्छी होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं किसान भाइयों कि श्रेष्ठ पौधों का चयन, तो श्रेष्ठ पौधे के चयन के लिए हमारे नियमित निरीक्षण के आधार पर हमें एक जैसे पौधों का चयन करना है। दूसरा, हमें ऐसे पौधों का चयन करना है जो खेत में सबसे मजबूत स्थिति में हो।
1: जी जी।
0: जिस पे पूरे आकार के फल लगे हों, और यदि एक से अधिक फल लगने वाली फसल है तो जिसमें सबसे ज्यादा फलियां या दाने लगे हैं, इस तरह के पौधों का चयन हमको करना है। पौधे के चयन में हमको ये भी ध्यान रखना है कि किस पौधे ने कीटों या बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ के अपनी पैदावार को उत्पन्न किया है।
1: बिल्कुल।
0: तो यदि इस तरह से हम एक पौधे का चयन करते हैं और उससे बीज प्राप्त करते हैं तो वो स्वस्थ, गुणवत्तापूर्ण और हम उस बीज को एक शक्तिशाली बीज बोल सकते हैं जो कीटों और बीमारियों से बेहतर लड़ने की क्षमता अपने अंदर रखता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। यही अब हम जानना चाहेंगे कि बीज शुद्धता की पारंपरिक प्रक्रिया क्या है जो हमारे किसान भाई बहनों को ध्यान होनी चाहिए।
0: तो किसान भाइयों, बीज शुद्धता की पारंपरिक प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो फसल में मौजूद अवांछित पौधों को हमें निकाल देना चाहिए, जहां जो भी खरपतवार है या फिर ऐसी फसल जो हमने नहीं लगाई है और जिसकी आवश्यकता या जरूरत हमें नहीं है। तो बीज उत्पादन में ये बीज की शुद्धता को निर्धारित करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
1: बिल्कुल।
0: अगर हम ये नहीं करते हैं तो इससे बीज की जो शुद्धता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि कार्यक्रम में हम बीज प्रबंधन को लेकर ढेर सारी बातें आपके माध्यम से जान पा रहे हैं, यही बीज की सफाई और ग्रेडिंग का क्या महत्व है?
0: तो किसान साथियों, बीज की सफाई और ग्रेडिंग की यदि बात करें तो बीज की सफाई केवल उसकी सुंदरता बढ़ाने का विषय नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: ये उसकी गुणवत्ता का प्रश्न है। जब किसान बीजों की सफाई करते हैं तो वास्तव में वो फसल की गुणवत्ता सुधार रहे होते हैं।
1: जी।
0: तो हमें छोटे दाने, टूटे हुए दाने या किसी तरह से रोगग्रस्त या कीटों के द्वारा खाए हुए दाने, इस तरह के दानों को अलग करना उसकी ग्रेडिंग का एक हिस्सा है। तो केवल पूरे भरे हुए, विकसित और स्वस्थ और भारी दानों को ही हमको बीज के रूप में उपयोग करना चाहिए। कई किसान पारंपरिक रूप से बीजों को उड़ा के भी देखते हैं, यानी कि हवा में से उनको नीचे गिराते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कोई बीज यदि अंदर से किसी कीट ने खा लिया है और उसका छिलका ही बचा है तो वो बीज इस तरह से अलग हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ सामान्य रूप से कई सारे किसान साथी पानी में डुबाकर भी बीजों का निरीक्षण करते हैं कि जो बीज अच्छे होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो बीज गुणवत्तापूर्ण नहीं होंगे वो पानी के ऊपर तैरते हैं। तो इस तरह से भी खराब बीजों को और अच्छे बीजों को अलग किया जाता है और ये ग्रेडिंग के भाग हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने हमें कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है, तो अंत में आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: अंत में हमारे किसान साथियों के लिए मेरा यही संदेश है कि जिस तरह से आज की परिस्थितियां हैं, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमारी खेती पर बहुत तेजी से पड़ रहा है, इस स्थिति में हमें निश्चित उत्पादन पाने के लिए अपने पारंपरिक बीजों का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जलवायु के अनुकूल है। ये कम पानी ज्यादा पानी जैसी परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम है।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ इनमें अपनी एक बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिससे हमें खेत में दूसरी तरह के अन्य खर्च करने की आवश्यकता कम से कम होती है।
1: बिल्कुल। तो सर, आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: आपका, वागड़ रेडियो का और सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ભયન બુનો સિમકી આપણે આપણે વાસે મનીષજી જોડ્યો તકા હતા ને એણે આપણાને ઘણી અસલ તરીકાથી બતાડ્યું હે કે આપણે જે વાગડ ક્ષેત્રના કિસાન ભાઈ બુન હે એ પારંપરિક બીજોનું પ્રબંધન હરતે કરી કઈ કઈ વાતોનું એણાને ધ્યાન રાખવું હે એને સાથે આપણી જે બુને હે એણાની બીજ ચયન મેં હું ભૂમિકા હે ને બીજની સફાઈની ગ્રેડિંગનું હું મહત્વ હે આશા કરું હો કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટ પડવાનું। तो सूटा तो पड़ा, पर जाते पहले हम रिलाय कर कितने मोरे पड़ा सूटा।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसे

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वगड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय है कहावतें और लोक कथाओं में छिपी जीवन की सीख को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि अंजलि हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों में कही जाने वाली छोटी छोटी कहावतें और बचपन में सुनी गई लोक कथाओं में जीवन का कितना बड़ा ज्ञान छिपा होता है। कभी दादी माँ की कहानी हमें ईमानदारी का रास्ता दिखाती है तो कभी किसी बुजुर्ग की कहानी एक पंक्ति हमें कठिन समय में धैर्य रखना सिखाती है।
0: बिल्कुल,
1: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जरूर जानेंगे कहावतें और लोक कथाओं में छिपी जीवन की सीख को लेकर। लेकिन शुरुआत में सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वगड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं कहावतें और लोक कथाओं में छिपी जीवन की सीख को लेकर। तो अंजलि, जैसे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जैसी करनी वैसी भरनी और एकता में बल, ये केवल कुछ शब्द नहीं है श्रोताओं, बल्कि जीवन जीने की ऐसी सीख है जो समय बदलने के बाद भी अपना महत्व नहीं खोती है। हमारे गाँव की चौपाल, खेतों की मेड़ों, घर के आंगन और परिवार के बीच सुनाई जाने वाली कहानियाँ केवल मनोरंजन का साधन नहीं रही, वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनुभव, संस्कार और समझ पहुँचाने का माध्यम रही है।
1: बिल्कुल शाकृति जी, क्योंकि आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहाँ मोबाइल और इंटरनेट ने हमारी दिनचर्या बदल दी है, वही एक सवाल हमारे सामने खड़ा है कि क्या हम अपनी लोक कथाओं और कहावतों में छिपे ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हम जैसा कि बात कर रहे हैं कि कहावतों और लोक कथाओं में छिपे जीवन की सीख को लेकर। तो श्रोताओं, अपनी लोक परंपराओं के उस खजाने को हम समझते हैं जिसमें हमारे समाज का अनुभव, हमारी संस्कृति और जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता छिपा है।
0: बिल्कुल,
1: इसमें सबसे पहली बात आती है अनुभव की अनमोल धरोहर है कहावतें और लोक कथाएं। कहना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों से कि भारत विविध भाषाओं, बोलियों और परंपराओं और संस्कृतियों का देश है।
0: बिल्कुल,
1: यहाँ हर क्षेत्र की अपनी कथाएं हैं, अपनी कहावतें हैं और जीवन को समझने के अपने तरीके हैं। राजस्थान के गांवों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक, खेतों में काम करने वाले किसानों से लेकर घर के आंगन में बैठी बुजुर्ग महिलाओं तक, हर जगह लोक ज्ञान की अपनी समृद्ध परंपरा दिखाई देती है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि कहावतें ऐसी छोटी छोटी पंक्तियाँ होती है जिनमें लंबे अनुभव का सार छिपा होता है। इन्हें याद रखना आसान होता है और सही अवसर पर इनका अर्थ जीवन को दिशा दे सकता है।
1: बिल्कुल,
0: उदाहरण के लिए हम बात बताएं तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस कहावत का अर्थ केवल पानी इकट्ठा करने से नहीं है श्रोताओं, ये हमें बताती है कि छोटी छोटी कोशिशों से मिलकर बड़े परिणाम पैदा होते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा सीखना, थोड़ी बचत करना, समय पर काम करना और लगातार प्रयास करते रहना, ये सभी इसी सीख के उदाहरण है। इसी प्रकार अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं कि लोक कथाएं ऐसी कहानियां हैं जिनमें पात्रों, घटना और परिस्थितियों के माध्यम से जीवन के अनुभव समझाए जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कभी कोई किसान अपनी समझदारी से समस्या का समाधान करता है, कभी कोई छोटा जीव अपनी बुद्धि से बड़े संकट को टाल देता है, तो कभी दो पड़ोसियों की कहानी हमें मिलजुल कर रहने का महत्व समझाती है।
1: जी जी,
0: इन कहानियों का उद्देश्य केवल ये बताना नहीं होता श्रोताओं कि क्या सही है और क्या गलत, वे हमें सोचने, परिस्थिति को समझने और अपने निर्णयों पर विचार करने का अवसर भी हमें देती है।
1: बिल्कुल शाकृति जी, यही अब बात आती है जैसे करनी वैसे भरनी।
0: बिल्कुल,
1: तो श्रोता साथियों, ये हमें कर्म का महत्व सिखाती है। हमारे समाज में यह कहावत जो है वो बहुत प्रसिद्ध है और यह हमें समझाती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव किसी न किसी रूप में हमारे जीवन और आसपास के समाज पर पड़ता है। यदि हम दूसरों के साथ ईमानदारी और सम्मान से व्यवहार करते हैं तो विश्वास का वातावरण बनता है। यदि हम किसी को धोखा देते हैं या दूसरों की मेहनत का अनुचित लाभ उठाते हैं तो संबंधों में अविश्वास पैदा होता है। आइए श्रोता साथियों, इसे एक छोटी सी लोक कथा के माध्यम से समझते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि जागृति जी, एक गांव में दो किसान रहते थे, दोनों के खेत आसपास थे। एक किसान अपने खेत की देखभाल मेहनत और ईमानदारी से करता, वह अपने पड़ोसी के खेत में पानी की आवश्यकता होने पर उसे भी मदद देता था। दूसरा किसान सोचता था कि केवल अपना लाभ देखना ही समझदारी है। एक वर्ष गांव में पानी की कमी हो गई। पहले किसान ने गांव के लोगों के साथ मिलकर पानी बांटने की योजना बनाई, लोगों ने भी उसका सहयोग किया, सामूहिक प्रयास से कई खेतों तक पानी पहुंच गया। दूसरे किसान ने शुरुआत में किसी का साथ नहीं दिया, जब उसके खेत में पानी की समस्या आई तब उसे समझ आया कि कठिन समय में संबंध और सहयोग कितने महत्वपूर्ण होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये कहानी हमें बताती है श्रोता साथियों कि हमारा व्यवहार हमारे आसपास के वातावरण को बनाता है, दूसरों के प्रति हमारा सहयोग समाज में विश्वास बढ़ाता
0: है। हाँ।
1: इसलिए जीवन में हर अच्छे काम का परिणाम तुरंत नहीं मिलता और हर कठिनाई किसी गलती का परिणाम नहीं होती है, फिर भी ईमानदारी, जिम्मेदारी और अच्छे कर्म जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम बताते हैं एकता में बल को लेकर, यानी कि श्रोताओं, एकता में बल यानी कि मिलजुल कर रहने की सीख। हमारे गांव में सामूहिक जीवन की एक लंबी परंपरा रही अंजलि। कुएं की मरम्मत हो, तालाबों की सफाई हो, रास्ते का निर्माण हो या फसल की कटाई, अनेक कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें मिलकर करना आसान हो जाता है। श्रोताओं, एकता में बल है, इसी सामाजिक समझ को सामने लाने वाली कहावत है। एक लोक कथा में एक बुजुर्ग अपने परिवार के सदस्यों को एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहते हैं। सभी लकड़ियां आसानी से टूट जाती है, फिर वे लकड़ियों का एक गट्ठर बांधकर उसे तोड़ने को कहते हैं। अब इसे तोड़ना कठिन हो जाता है। इस उदाहरण से बुजुर्ग समझाते हैं कि जब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं तो वे कई मुश्किलों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस सिक्का का अर्थ ये नहीं है कि सभी को हर बात पर सहमत होना चाहिए। सच्ची एकता तो वो है जिसमें अलग अलग विचार रखने वाले लोग भी बातचीत करके साझा समाधान खोज सकते हैं। गांव की ग्राम सभा में अगर लोग पानी, शिक्षा, सड़क, स्वच्छता और सार्वजनिक संसाधनों पर मिलकर चर्चा करेंगे तो विकास की योजनाएं और अधिक प्रभावी बन सकती है।
1: बिल्कुल,
0: और यही सच्चे स्वराज की भावना है, जहां समाज अपनी समस्याओं को समझता है, निर्णयों में भाग लेता है और मिलजुल कर समाधान खोजता है।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आज हम जान रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से कहावतों और लोक कथाओं में छिपी जीवन की सीख को लेकर। तो जैसा कि बातें आगे और भी निरंतर यूं ही कार्यक्रम में बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना, एकता में बल है कि मिलजुल कर रहना कैसे हम सीख सकते हैं, यही बात आती है जहाँ चाह वहाँ राह,
1: बिल्कुल,
0: यानी धैर्य और प्रयास के महत्व को। जागृति जी, लोक कथाओं में ऐसे अनेक पात्र मिलते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं छोड़ते। वे अपनी बुद्धि, मेहनत और धैर्य से समाधान खोजते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह का अर्थ है कि किसी लक्ष्य को पाने की सच्ची इच्छा के साथ योजना बनाकर लगातार प्रयास करना।
1: जी हाँ,
0: मान लीजिए श्रोता साथियों कि किसी गांव के बच्चों को पुस्तकालय की सुविधा नहीं मिलती। कुछ लोग सोच सकते हैं कि पुस्तकालय बनाने के लिए बहुत धन चाहिए, इसलिए यह संभव नहीं है। लेकिन यदि शिक्षक, अभिभावक और गांव के लोग मिलकर पुराने कमरे को व्यवस्थित करें, पुस्तकें जुटाएं और पढ़ने का समय तय करें, तो एक छोटी शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे यही प्रयास एक उपयोगी सामुदायिक पुस्तकालय का रूप ले सकता है।
1: बिल्कुल,
0: यहाँ ध्यान देने वाली बात जागृति जी ये है कि केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं है, सही जानकारी, संसाधनों का उपयोग, दूसरों का सहयोग और नियमित प्रयास भी आवश्यक है। लोक कथाएं हमें यह समझाती हैं कि कठिनाइयां देखकर रुक जाना ही एकमात्र विकल्प नहीं है, हम परिस्थिति को समझकर उसके अनुसार नया रास्ता भी खोज सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आपने बताया कि जहाँ चाहा वहाँ राह की बात को, यही अगर बुजुर्गों की कहानियों को लेकर हम बात करें तो हमारे घरों में दादा दादी, नाना नानी और अन्य बुजुर्ग अक्सर अपने जीवन के अनुभवों से जुड़ी कहानियां हमें सुनाते हैं। उनकी बातों में पुराने समय का रहन सहन, खेती के तरीके, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, रिश्तों की अहमियत और कठिन परिस्थितियों से निपटने के अनुभव शामिल होते हैं। पहले कई बच्चे रात को सोने से पहले कहानियां सुन सकते थे। इन कहानियों के माध्यम से वे भाषा सीखते थे, नए शब्दों से परिचित होते थे और सही गलत पर विचार करना सीखते थे। आज हम देख रहे हैं अंजलि कि तकनीक ने मनोरंजन के बहुत सारे साधन दे दिए हैं। मोबाइल और इंटरनेट ने जानकारी प्राप्त करना आसान कर दिया है, लेकिन परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने और कहानी सुनने का अनुभव भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। यदि सप्ताह में एक दिन श्रोताओं, परिवार के सदस्यों के साथ हम बैठकर कोई पुरानी कहानी सुने तो बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। बच्चे भी अपने बुजुर्गों से पूछ सकते हैं कि उनके बचपन में गांव कैसा था, लोग पानी कैसे बचाते थे, खेती कैसे होती थी और त्योहार किस तरह मनाए जाते थे। इस तरह बातचीत केवल अतीत की याद नहीं रहेगी बल्कि अनुभव को समझने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि हर पुरानी मान्यता सही नहीं होती। किसी भी कहानी या कहावत को समझते समय तर्क, समानता, सम्मान और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जुड़ती है, वो है लोक कथाओं में छिपा प्रकृति संरक्षण का संदेश।
1: बिल्कुल
0: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारी अनेक लोक कथाएं प्रकृति, जंगल, पानी, मिट्टी और पशु पक्षियों से जुड़ी होती है। ग्रामीण जीवन में प्रकृति केवल आसपास का दृश्य नहीं बल्कि जीवन और आजीविका का आधार भी है। किसानों का जीवन वर्षा, मिट्टी की उर्वरता और पानी की उपलब्धता से जुड़ा होता है। पशुपालकों के लिए चारागाह, जल स्रोत महत्वपूर्ण होते हैं। जंगल अनेक समुदायों को भोजन, आजीविका

0: उपयोगी है, लेकिन मौसम और खेती से जुड़े निर्णय लेते समय वैज्ञानिक जानकारी को भी महत्व देना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: एक काल्पनिक लोक कथा की अगर कल्पना करें तो श्रोता साथियों, एक गांव में लोग तालाब का पानी बिना सोचे समझे इस्तेमाल करने लगे। गर्मी आने पर तालाब सूखने लगा, तब गांव के बुजुर्गों ने लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि पानी केवल वर्तमान जरूरत नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी जिम्मेदारी है। गांव वालों ने वर्षा जल संचयन की व्यवस्था बनाई, तालाब की सफाई की और पानी के उपयोग के नियम तय किए।
1: बिल्कुल।
0: अगले वर्ष बारिश का पानी बेहतर ढंग से जमा होने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन उसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। यही सीख आज के समय में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब जल संरक्षण, मिट्टी की गुणवत्ता और पर्यावरण संतुलन हमारे सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहेंगे कि कहावतों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे केवल पुराने समय के लिए नहीं, उनका सही अर्थ समझकर आज के जीवन में भी उपयोग किया जा सकता है। सोच समझकर कदम उठाना हमें निर्णय लेने से पहले परिणामों पर विचार करना सिखाता है।
0: बिल्कुल।
1: जल्दी का काम शैतान का हमें याद दिलाता है कि बिना पर्याप्त ध्यान दिए काम करने से गलतियां हो सकती है। इसी प्रकार जैसा देश वैसा भेष का भाव ये है कि किसी स्थान की परिस्थिति और स्थानीय रीति रिवाजों को समझना चाहिए। इसका अर्थ अपनी पहचान छोड़ना नहीं बल्कि दूसरों की संस्कृति का सम्मान करना है। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से बस यही कहना चाहेंगे कि आपने अपने घर या गांव में ऐसी कौन सी कहावत सुनी जो आज भी आपको जीवन में सही रास्ता चुनने की प्रेरणा देती है। क्या आपको अपने दादा दादी, नाना नानी या गांव के किसी बुजुर्ग की सुनाई हुई कोई ऐसी लोक कथा याद है जिसकी सीख आप आज भी नहीं भूले हैं? आप अपनी कहावत, उसका अर्थ और उससे जुड़ा अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हो सकता है श्रोता साथियों कि आपके द्वारा साझा की गई एक छोटी सी कहानी किसी दूसरे श्रोता के जीवन में भी नई समझ पैदा कर सकती है। इसलिए याद रखिए, हर परिवार के पास एक कहानी है और हर कहानी में कोई न कोई सीख छिपी हो सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और आज की इस चर्चा से हमने यही जाना कि कहावतें और लोक कथाएं हमारे समाज की अनुभव संपदा है। वे हमें मेहनत करना, धैर्य रखना, दूसरों का सहयोग करना, प्रकृति की रक्षा करना और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना सिखाती है।
1: बिल्कुल।
0: और अंजलि, हमारे श्रोता साथी को हम ये भी कहना चाहेंगे कि लोक कथाएं हमारी विरासत है, कहावतें हमारा अनुभव है और उनसे मिली अच्छी सीख हमारे बेहतर भविष्य की नींव है।
1: बिल्कुल। तो साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारशर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाय यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है संक्रमण से बचाव में घर की रोजमर्रा की चीजों की सफाई कितनी जरूरी है इसको लेकर, क्योंकि हम सभी अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहते हैं। सुबह उठते ही घर में झाड़ू लगाना, आंगन साफ करना, बर्तन धोना, कपड़ों को व्यवस्थित रखना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन श्रोता साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर को हम साफ मानते हैं वहाँ इस्तेमाल होने वाली रोजमर्रा की चीजों पर भी गंदगी और संक्रमण फैलने वाले सूक्ष्मजीव मौजूद हो सकते हैं? जरा सोचिए कि सुबह उठते ही हम सबसे पहले अपने मोबाइल फोन को हाथ लगाते हैं, फिर रसोई में जाकर सब्जियां काटते हैं, पानी का बर्तन छूते हैं, दरवाजे की कुंडी खोलते हैं और बच्चों को खाना खिलाते हैं। इन सभी कामों के दौरान मनीषा हमारे हाथ कई चीजों को छूते हैं। यदि इन चीजों की नियमित सफाई न हो और हाथों की स्वच्छता का ध्यान न रखा जाए तो संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि घर की किन चीजों की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, सफाई करने का सही तरीका क्या है और किन छोटी छोटी आदतों को अपनाकर हम अपने परिवार को बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं संक्रमण से बचाव, घर की रोजमर्रा की चीजों की सफाई रखना क्यों जरूरी है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों में कुछ बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद शामिल होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इनमें से कुछ हमारे आसपास की सतहों पर कुछ समय के लिए जीवित रह सकते हैं। जब कोई व्यक्ति श्रोता साथियों खांसता है, छींकता है या गंदे हाथों से किसी वस्तु को छूता है, तो अंजलि जी हम देखते हैं कि कुछ परिस्थितियों में संक्रमण फैलाने वाले जीव उन सतहों पर पहुंच सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसके बाद श्रोता साथियों, यदि दूसरा व्यक्ति उसी वस्तु को छूकर बिना हाथ धोए मुंह, नाक या आंखों को छू ले, तो अंजलि जी हम देखते हैं कि संक्रमण का खतरा है वो पैदा हो सकता है। हालांकि श्रोता साथियों, हर गंदी वस्तु से बीमारी नहीं फैलती है और संक्रमण सतहों के माध्यम से भी नहीं फैलता है। कई संक्रमण हवा, दूषित भोजन या पानी के जरिए भी फैलते हैं। यही कारण है साथियों कि घर की सफाई केवल घर की सुंदरता दिखाने के लिए नहीं होती है, बल्कि स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। हमारे घर में छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति भी होते हैं। ऐसे में श्रोता साथियों, साफ सफाई के प्रति लापरवाही उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमें सफाई को किसी एक दिन का काम नहीं समझना है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदत हमें बनानी है।
1: बिल्कुल मनीषा, यही बात करते हैं रसोई की सफाई क्यों है सबसे जरूरी। तो साथियों, रसोई वह जगह है जहां हमारे परिवार के लिए भोजन तैयार होता है। भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा और पोषण मिलता है। लेकिन यदि भोजन बनाने की जगह बर्तन और हाथ साफ न हो, तो यही भोजन बीमारी का कारण भी बन सकता है। रसोई में इस्तेमाल होने वाले चाकू, चॉपिंग बोर्ड, चप्पल, प्लेट्स, गैस के आसपास की सतह और पानी के बर्तन की नियमित सफाई जरूरी है। कल्पना कीजिए श्रोता साथियों, कि हमने कच्ची सब्जी को काटने के लिए जिस चॉपिंग बोर्ड या किसी भी चीज का इस्तेमाल किया है, उसको अच्छी तरह साफ किए बिना उस पर खाने के लिए तैयार भोजन अगर हम रख दें, तो ऐसा करने से हानिकारक सूक्ष्म जीव भोजन तक पहुँच सकते हैं। इसलिए हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि खाना बनाने से पहले और बाद में हाथ साबुन से धोएं, कच्ची सब्जी और खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ के लिए साफ बर्तन और अलग अलग चॉपिंग बोर्ड इस्तेमाल करें, बर्तन को साफ पानी और डिश वॉशिंग साबुन से अच्छी तरह धोएं, रसोई के कपड़े और स्पंज को नियमित रूप से साफ करें और सूखने दें, कूड़ेदान को ढककर रखें और नियमित रूप से खाली करके साफ करें, पीने के पानी को साफ ढके हुए बर्तन में रखें और पानी निकालने के लिए साफ बर्तन का ही इस्तेमाल करें। क्योंकि श्रोता साथियों, रसोई में सफाई का अर्थ केवल फर्श का पानी डालना नहीं, भोजन बनाने और रखने वाली जगहों को साफ करना भी उतना ही जरूरी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं, तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले मनीषा हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें कि मोबाइल फोन और दरवाजे की कुंडी की सफाई कैसे करें। तो साथियों, आज मोबाइल फोन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। हम इसे घर में, बाजार में, यात्रा के दौरान और कई बार खाना बनाते समय भी इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फोन को बार बार छूने के कारण उसकी सतह पर गंदगी और सूक्ष्म जीव पहुंच सकते हैं।
1: हाँ।
0: इसी तरह दरवाजे की कुंडी, बिजली के स्विच, मेज, कुर्सी के हत्ते और पानी के नल को परिवार के कई सदस्य छूते हैं। इन चीजों की नियमित सफाई करने से संक्रमण फैलने का खतरा कम करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि मनीषा, मोबाइल फोन की सफाई करते समय उसकी कंपनी के निर्देश जो है उनका भी पालन करना हमारे लिए जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: फोन को साफ करने से पहले चार्ज निकाल दें, मुलायम और बिना रेशे वाले कपड़े का इस्तेमाल करें और फोन पर सीधे पानी या सफाई का तरल पदार्थ न छिड़कें। दरवाजे की कुंडी, स्विच और अन्य अधिक छुए जाने वाली चीजों को जरूरत के अनुसार घरेलू सतहों के लिए उपयुक्त सफाई उत्पाद से साफ करें। ध्यान रखें कि सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी उत्पाद हर सतह के लिए सुरक्षित नहीं होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए उत्पाद के लेवल पर दिए गए निर्देश पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यहीं अगर बात करेगी कपड़े, तौलिए और बिस्तर की सफाई की, तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हम दिन भर जिन कपड़ों को पहनते हैं वे पसीने, धूल और गंदगी के संपर्क में आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इस तरह तौलिया, रूमाल, चादर और तकिए के कवर की नियमित सफाई करना भी हमारे लिए जरूरी है। यदि परिवार में किसी सदस्य को त्वचा का संक्रमण, आंखों का संक्रमण या कोई अन्य संक्रमण बीमारी है, तो व्यक्तिगत वस्तुओं को साझा करते समय हमें बचना चाहिए। कपड़े और तौलियों को उनकी जरूरत, इस्तेमाल और गंदगी के अनुसार नियमित धोएं। जहां संभव हो श्रोता साथियों, उन्हें पूरी तरह से सुखाएं। साथ ही कहना चाहेंगे साथियों कि नम कपड़ों को लंबे समय तक बंद जगह पर हमें नहीं रखना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: इससे अंजलि जी हम देखते हैं कि दुर्गंध और फफूंद की समस्या है वो बढ़ सकती है। साथ ही साथियों, बच्चों के कपड़े, तौलिए और बिस्तर को भी हमें साफ रखना है। यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी व्यक्तिगत वस्तुओं की सफाई रखना भी हमारे लिए जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, इसका अर्थ यह नहीं है कि हर वस्तु को रोज धोना जरूरी है। सफाई की आवृत्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु का इस्तेमाल कितना हो रहा है और कितनी गंदी हो रही है, इसके अनुसार ही हमें उसकी सफाई करनी है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को बाथरूम और शौचालय की सफाई के बारे में बताएं। श्रोता साथियों, बाथरूम और शौचालय ऐसी जगह है जहां सफाई पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। यहां नमी अधिक होने के कारण कुछ प्रकार के सूक्ष्म जीव और फफूंद पनप सकते हैं। यदि शौचालय की सफाई ठीक से न की जाए, हाथ न धोए जाए या गंदे कपड़ों और तौलियों को लंबे समय तक नम रखा जाए, तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए शौचालय की सीट, फ्लश का बटन, नल और दरवाजे की कुंडी की नियमित सफाई करें। बाथरूम को यथासंभव सूखा और हवादार रखें। इस्तेमाल के बाद तौलियों को सुखाएं और समय समय पर धोएं। शौचालय इस्तेमाल करने के बाद, सफाई करने के बाद हाथों को साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। एक बहुत जरूरी बात याद रखें कि शौचालय या बाथरूम साफ करते समय ब्लीच को एसिड, टॉयलेट क्लीनर या अमोनिया वाले उत्पादों के साथ कभी न मिलाएं। ऐसा करने से जहरीली गैस निकल सकती है, जो जानलेवा भी हो सकती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए सफाई के इस्तेमाल को हमेशा उसके निर्देशों के अनुसार ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यहीं अगर बात करें कि बच्चों की खिलौने की सफाई रखना क्यों जरूरी है इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि घर में छोटे बच्चे हैं, वो खिलौना खेलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: उन्हें हाथ लगाते हैं और कई बार मुंह में भी अंजलि जी डाल देते हैं। ऐसे में श्रोता साथियों, खिलौनों की सफाई करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बच्चों के खिलौने उनकी उम्र और उनकी सामग्री के अनुसार हम साफ कर सकते हैं। प्लास्टिक के खिलौनों को निर्माता के अनुसार धोकर अच्छी तरह से सुखाया जा सकता है। कपड़े के खिलौनों को श्रोता साथियों उनके लेबल के अनुसार हम धो सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: यदि कोई खिलौना जमीन पर गिर जाए या बच्चा उसे मुंह में डाल ले, तो श्रोता साथियों जरूरत के अनुसार उसे साफ करें। बीमार बच्चे द्वारा इस्तेमाल किए गए खिलौनों की सफाई करना भी हमारे लिए जरूरी है।
0: बिल्कुल मनीषा, यही बात करें तो हमें पानी और बर्तनों का भी इसी तरह स्वच्छता का ध्यान रखना है। यही हम देखते हैं कि घर की सफाई करते समय हम कई सारी गलतियां कर देते हैं, जैसे कि पहली गलती करते हैं कि केवल दिखाई देने वाली गंदगी ही साफ करते हैं। हमें उन जगहों पर भी ध्यान देना चाहिए जिन्हें बार बार छुआ जाता है, जैसे कि नल, स्विच, मोबाइल और दरवाजे की कुंडी। गई। दूसरी गलती करते हैं कि गंदे कपड़े से कई जगह सफाई करना। एक ही गंदे कपड़े को रसोई, शौचालय और खाने की मेज पर इस्तेमाल करने से गंदगी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती है, इसलिए अलग अलग कामों के लिए अलग कपड़े रखें और उन्हें नियमित रूप से धोएं। तीसरी गलती करते हैं सफाई के बाद हाथ न धोना। श्रोता साथियों, कूड़ा उठाने, शौचालय साफ करने या गंदी सतहों को साफ करने के लिए बाद हाथ साबुन और पानी से धोना बहुत जरूरी है, इसलिए इस गलती को भी हमें दोबारा नहीं करना है। चौथी गलती हम करते हैं मनीषा के, बहुत अधिक रसायनों का इस्तेमाल कर देते हैं। ज्यादा रसायनों का इस्तेमाल करते समय हम देखते हैं कि कुछ जहरीली गैस जो है वो हमारे नाकों में, आंखों में जाकर समस्या पैदा कर सकती है, इसलिए उत्पाद पर लिखी मात्रा और सावधानी का हमें ध्यान रखने की जरूरत है।
1: जी हाँ,
0: इसी के साथ हमें घर के सभी सदस्यों को अपनी उम्र और क्षमता के अनुसार सफाई में सहयोग करने के लिए प्रेरित करना है। इससे काम का बोझ भी कम होता है और परिवार में स्वच्छता की सामूहिक आदत भी विकसित होती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि संक्रमण से बचाव के लिए कुछ छोटी और प्रभावी आदतें हैं जिन्हें हम जीवन का हिस्सा हम बना सकते हैं। जैसे कि साथियों, खाना बनाने, खाने से पहले या शौचालय इस्तेमाल के बाद हमें हाथ ही वो साबुन से धोने हैं। रसोई और खाने की जगहों को हमें साफ रखना है। साथ ही साथियों, मोबाइल, दरवाजे की कुंडी, नल और स्विच जैसी जो चीजें होती है उन्हें भी हमें समय समय पर साफ करना है। भोजन को ढक कर रखें और कच्चे या पक्के भोजन को अलग रखें। तौलिये और रुमाल और व्यक्तिगत जो इस्तेमाल होने वाली वस्तु है उन्हें भी समय पर धोना हमारे लिए जरूरी है। साथ ही साथियों, कहना चाहेंगे कि पीने के पानी को हमें सुरक्षित रखना है और कूड़े का निपटान है वो हमें सुरक्षित तरीके से करना है। घर में हवा और रोशनी आने दें और नमी वाले जगहों को हमें सुखाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथियों, अगर हम सफाई के लिए कुछ रसायनों का उपयोग करते हैं तो उन्हें हमें बच्चों से दूर रखना है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से संक्रमण का खतरा जो है वो हमारे घर की रोजमर्रा की चीजों से हमें हो सकता है, तो उनका ध्यान हमें कैसे रखना है और सफाई कैसे करने की जरूरत है। यही अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
1: नमस्कार।

लेकिन कई बार हम उस चीज के पीछे भागने लगते हैं जो हमारे पास नहीं है, कि हमारे पास पहले से जो कुछ है उसकी कीमत हम भूल जाते हैं। हम श्रोता साथियों सोचते रहते हैं कि काश मेरे पास यह होता, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती, काश मुझे वो मौका मिल जाता। इसी सोच में हम यह देखना भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी में आज भी बहुत कुछ ऐसा है जो कभी हमारी इच्छा हुआ करता था। इसलिए आज का हमारा विषय है साथियों, जो मिला नहीं उसके पीछे भागने से पहले जो है उसकी कद्र करें। तो श्रोता साथियों, इस विषय को लेकर कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

संवाद करने वाले हैं, जो मिला नहीं उसके पीछे भागने से पहले जो है उसकी कद्र करें। जी हाँ श्रोता साथियों, हम इंसानों की आदत है कि जो चीज हमारे पास होती है उसकी आदत पड़ जाती है, और जो चीज हमारे पास नहीं होती है वह ज्यादा खास लगने लगती है। जिसके पास श्रोता साथियों साधारण मोबाइल है वह महंगा मोबाइल फोन चाहता है, जिसके पास छोटी नौकरी है वह बड़ी नौकरी चाहता है, जिसके पास छोटा घर है वह बड़ा घर चाहता है। जिसे एक सफलता मिल गई श्रोता साथियों, वह दूसरे सफलता के पीछे भागने में लगा रहता है। आगे बढ़ने की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन अगर इसी दौड़ में हम अपनी वर्तमान जिंदगी की खुशियाँ भूल जाएं, तो समस्याएं शुरू हो जाती हैं। हमें ये समझना होगा कि सपने देखना जरूरी है, लेकिन वर्तमान की कद्र करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। साथ ही श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहूंगी कि जरा अपने जीवन को पीछे मुड़ कर देखिए। हो सकता है कुछ समय पहले आप जिस चीज की इच्छा करते थे वह आज आपके पास हो, जिस नौकरी के लिए आपने कभी कोशिश की थी वह आपके पास है, जिस पढ़ाई को पूरा करने का सपना देखा था वह पूरा हो चुका है, जिस चीज को पाने के लिए आपने मेहनत की थी वह आज आपकी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन श्रोता साथियों, अब हम उनकी खुशियाँ महसूस नहीं करते क्योंकि हमारा ध्यान ही वो अगली चीजों पर चला गया है। इसलिए श्रोता साथियों, कभी कभी रुक कर अपने आप से पूछना चाहिए, मैंने जो पाया है उसके लिए क्या मैंने कभी सपना देखा था। यह सवाल हमें अपने जिंदगी की बहुत सी छोटी बड़ी खुशियों का एहसास करा सकता है। साथ ही श्रोता साथियों, कहना चाहूंगे कि यहाँ एक बात साफ समझना बहुत जरूरी है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आपको बेहतर नौकरी चाहिए तो मेहनत कीजिए, अगर आपको पढ़ाई में आगे जाना है तो तैयारी कीजिए, अगर आपको अपना घर बनाना है तो उसके लिए योजनाएं बनाइए, अगर आपका कोई बड़ा सपना है तो उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। लेकिन श्रोता साथियों, आगे बढ़ते हुए अपने वर्तमान जिंदगी को कम मत समझिए, नई मंजिल की तरफ बढ़िए, लेकिन पुरानी मंजिलों की खुशियां मत भूलिए। क्योंकि श्रोता साथियों, जिंदगी सिर्फ उस दिन का नाम नहीं है जब हमें अपना लक्ष्य मिलेगा, जिंदगी आज भी है और आज का समय वापस नहीं आएगा। साथ ही साथियों, आज सोशल मीडिया और आसपास के माहौल में हम लगातार दूसरों की जिंदगी को देखते हैं। किसी की अच्छी नौकरी देखकर लगता है कि हमारी नौकरी छोटी है, किसी का सुंदर घर देखकर लगने लगता है कि हमारा घर अच्छा नहीं है, किसी की सफलता देखकर हमें अपनी मेहनत कम लगने लगती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं साथियों कि हमें दूसरे व्यक्ति की पूरी कहानी पता नहीं, हमें सिर्फ उसकी सफलता दिखाई देती है, उसकी परेशानियाँ, संघर्ष, असफलताएं और मेहनत दिखाई नहीं देती। इसलिए दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना करने के बजाय अपनी यात्रा को देखिए, अपने आप से पूछिए क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर हुआ हूँ। अगर जवाब हाँ है तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। खुशी हमेशा श्रोता साथियों बड़ी चीजों से नहीं मिलती है, परिवार के साथ बैठकर खाना खाना भी एक खुशी है, किसी अपने का हाल पूछना भी श्रोता साथियों खुशी है, सुबह का शांत समय भी खुशी है, अपने काम को ईमानदारी से पूरा करना भी खुशी है, किसी की मदद कर पाना भी खुशी है, अपनी मेहनत से कुछ सीखना भी खुशी है। कई बार हम बड़ी खुशी की तलाश में छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि श्रोता साथियों जिंदगी इन्हीं छोटी खुशियों से मिलकर बनती है। कई लोगों को लगता है कि अगर हम अपनी वर्तमान जिंदगी से संतुष्ट हैं तो फिर आगे बढ़ने की इच्छा कैसे रखेंगे। लेकिन संतोष का मतलब श्रोता साथियों यह नहीं है कि हम आगे बढ़ना ही छोड़ दें। संतोष का मतलब है जो मेरे पास है उसकी कद्र करते हुए जो बेहतर चाहिए उसके लिए मेहनत करना। हम एक साथ दो बातें कर सकते हैं, हम अपने आज के लिए आभारी भी रह सकते हैं और अपने कल के लिए मेहनत भी कर सकते हैं। यही संतुलन श्रोता साथियों जीवन को बेहतर बनाता है। जैसा कि श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं, तो ये बातें आगे भी ऐसे ही निरंतर जारी रहेंगी। लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के इस गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रही थी, जो मिला नहीं उसके पीछे भागने से पहले जो है उसकी कद्र करें। तो कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों हमने ढेर सारी बातों को जाना था। जो है वही हमारा कभी सपना हुआ करता था, आगे बढ़ना गलत नहीं है और छोटी खुशियों की भी हमें कदर करनी चाहिए। यही श्रोता साथियों बात करते हैं अपने पास मौजूद लोगों की कदर हम कैसे करें इसकी। तो श्रोता साथियों कहना चाहूंगी कि कई बार हम चीजों की तलाश में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने रिश्तों की तरफ ध्यान देना ही भूल जाते हैं। परिवार के लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं, दोस्त मुश्किल समय में हमारा साथ देते हैं, कोई हमें समझता है, कोई हमारी हिम्मत बढ़ाता है, लेकिन श्रोता साथियों हम अक्सर उनकी मौजूदगी को सामान्य मान लेते हैं। इसलिए अपने लोगों की कद्र कीजिए, कभी कभी उनसे कहिए आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि श्रोता साथियों कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें खोने के बाद उनकी कीमत समझ आती है। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो हमें नहीं मिलेंगी, हर इच्छा पूरी नहीं होगी, हर सपना उसी रूप में पूरा नहीं होगा जैसा हमने सोचा था, हर अवसर हमारे हिस्से में नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी जिंदगी अधूरी है। कभी कभी जो चीजें हमें नहीं मिलती है उसके पीछे कोई दूसरा रास्ता हमारा इंतजार कर रहा होता है। इसलिए जो नहीं मिला है उसका दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन उसी दुख में पूरी जिंदगी को रोक देना सही नहीं है। खुद से कहिए श्रोता साथियों, जो मिला है उससे मैं सीखूंगा, जो मिला है उसकी कद्र करूंगा, जो पाना है उसके लिए मेहनत करूंगा। जी हाँ श्रोता साथियों, आज रात आपको जब भी थोड़ा समय मिले एक कागज पर तीन चीजें जरूर लिखिए। पहली, मेरे पास आज क्या क्या है उसके लिए मैं आभारी हूँ। दूसरी, मेरे जीवन में कौन कौन से लोग मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। तीसरी, मुझे आगे क्या हासिल करना है और उसके लिए मेरा अगला छोटा कदम क्या होगा। जब श्रोता साथियों हम इन तीनों चीजों को समझ लेते हैं तो हमारी सोच है वो बदलने लगती है, कि हमें पता चलता है कि हमारे पास बहुत कुछ है और आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। जी हाँ श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगी आज हमारी बात का सार यही है, सपने देखिए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, लेकिन अपने आज को मत भूलिए। जो नहीं मिला उसके पीछे जरूर जाइए, लेकिन इतना नहीं कि जो आपके पास ही उसकी खुशी है वो खत्म हो जाए। क्योंकि श्रोता साथियों, जिंदगी केवल भविष्य की मंजिल नहीं है, जिंदगी आज का पल भी है। इसलिए अपने परिवार की कद्र कीजिए, अपने समय की कद्र कीजिए, अपने आप की कद्र कीजिए, अपने पास मौजूद अवसरों की कद्र कीजिए और सबसे जरूरी श्रोता साथियों, खुद की कद्र करना सीखिए। याद रखिए, जो मिला नहीं वह हमारी कमी नहीं बताता, जो मिला है उसकी कद्र करना हमारी जिम्मेदारी बताता है। तो श्रोता साथियों, सपने जरूर देखिए, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी कीजिए, लेकिन अपने आप को इतना छोटा मत समझिए कि कल की तलाश में आज की खुशी आप खो दें। इसी खूबसूरत सोच के साथ में श्रोता साथियों आज के कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में मेरी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रही, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भयन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाय तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोलो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हूं ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है।
1: होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
0: प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबो ने पूछे है जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनु अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने है ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जई वरे अधिकार हंग्र अपनावी जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

तो साथियों, ये तो थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज के सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों, हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।